सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58:50 हुए हैं। इस मीटर पर अब हमारी प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया।

0: है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

ईश्वरीय परम सत्ता का एक अंश ये प्राणी भी है और इसी प्राणी की भक्ति पर रीछ कर परम नियंता भी प्रसन्नता पूर्वक उसका दास बन बैठता है।

जन्म जन्म से ईर्ष्या द्वेष क्रोध और छल कपट में फंसा मैं बिना आपकी कृपा के इस जन्म भी उभर नहीं सकता। ये तभी संभव होगा जब आपकी कृपा

ऐ मेरे मालिक, तेरी कृपा को हमने तब भी महसूस किया जब हम माँ के गर्भ में थे, और आज भी जब पृथ्वी माँ की गोद में है। हम तेरे कर्मों पर ही जिंदा हैं, तूने ही हमें पाला है। ऐ मेरे मालिक, तू ऐसे ही अपनी मेहर हम सब पर सदा बनाए रखना।

राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र प्रभु तो सभी के प्रिय हैं, परंतु माँ यशोदा को द्वारिकाधीश में भी अपने उसी कान्हा को देखती है जो आंगन की माटी में धूल धूसरित होकर रोज अपना श्रृंगार बिगाड़ लेने के बावजूद भी सुंदरता की सीमा से पार पा जाते थे।

0: आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जिन स्वरों को सुना वे स्वर थे अनूप जलोटा, मन्ना डे मुकेश, आशा भोसले और पीनाज मसानी के। इसी के साथ ये देशगान आपने सुना संवेद स्वरों में और अब कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम प्रकाश किरण का। आइए सुने आज के कार्यक्रम में जैन ग्रंथ ज्ञानार्ण से पाठ। आलेख और वाचन स्वर दामोदर शास्त्री का है।
1: हिंसैव जगन्माता हिंसैवानंद पद्धति अहिंसैव गति साध्वी श्रीरहिंसैव शास्वती। अहिंसा ही संपूर्ण विश्व की माता है। अहिंसा का मार्ग वह मार्ग है जो शाश्वत सुख तक पहुंचाता है। अहिंसा ही उत्तम सदगति है और अहिंसा ही ऐसी लक्ष्मी है जो कभी नष्ट नहीं होती। अहिंसैव शिवम सूते दत्ते च त्रिदिवश्रियम् अहिंसैव हितम कुर्यात् व्यसनानि निरस्यति। अहिंसा से ही शिव पद की, परमात्म पद की प्राप्ति हो सकती है। अहिंसा के आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है और अहिंसा ही एक ऐसा आचरण है जिससे सब प्रकार के आपत्तियों से मनुष्य अपने को रक्षित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। तपस्रुत यमज्ञ

मता तप ज्ञान संयम ध्यान दान जितने भी सत्कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं उन सब के मूल में अहिंसा ही विद्यमान है। बिना अहिंसा के कोई भी सत्कर्म सफल नहीं हो सकता, ये भाव है। अभयम् यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीम् अनन्दिताम् पश्यात्म सदृशं विश्वं जीवलोके चराचरम्। हे प्राणी, तू प्राणियों को अभय प्रदान कर, उनका संरक्षण कर, सबके साथ निष्कपट होकर मित्रता रख, संपूर्ण विश्व को, इसमें रहने वाले प्राणियों को अपने समान देख, यही अहिंसा का आचरण है। अहिंसा व्रत सिद्ध्यर्थम यम जातम जिनैर्मतम नारोहति पराम कोटिम तदेवा सत्य दूषितम। दुनिया में जितने भी व्रत हैं वे सब अहिंसा की सिद्धि के लिए ही हैं। इन व्रतों में सत्य व्रत की तो बड़ी महत्ता गाई हुई है। सत्य व्रत के अभाव में अहिंसा व्रत की पूर्णता कभी संभव नहीं हो सकती। सुनृतम करुणाक्रांतम अविरुद्धम अनाकुलम अग्राम्यम गौरवाश्लिष्टम वचः शास्त्रे प्रशस्यते। जो वचन सत्य होने के साथ साथ निर्दयता से युक्त न हो, विरोध और आकुलता पैदा करने वाला न हो, सभ्यता और शिष्टता से भरपूर हो और गौरवपूर्ण हो, ऐसे ही वचन की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। मौनमेव हितम पुंसाम सस्वत सर्वार्थ सिद्धये वचो वाति प्रियम तथ्यम सर्वसत्वोपकारियत। ऐसे तो सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मौन रखना ही ठीक होता है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो शास्त्र की आज्ञा है कि ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वालों को अत्यंत प्रिय लगे और वह यथार्थ होने के साथ साथ

0: ही नहा। जिनके हृदय में दया का समुद्र हिलोरें लेता हो, जिनके वचन रूपी तरंगों से प्राणियों को शांति पहुंचती हो, ऐसे महापुरुष ही इस संसार में धन्य हैं।
1: जैन ग्रंथ ज्ञानारणम से पाठ आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान। आज के संगीतबद्ध प्रसंग को स्वर दिया है राजन मिश्र और साजन मिश्र ने। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीया का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष शोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज दिन में 11 बजे से आपको सुनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम मन की बात। हमारी सांध्यकालीन सभा में संध्या 7:30 पर आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम थाईलैंड के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तय। रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुगूंज। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी लीजिएगा पशुओं में चर्म रोग के विषय में। जानकारी देंगे हमारे वार्ताकार देवेंद्र कुमार सारस्वत। संस्कृत में समाचार होंगे प्रातः 6:55 पर और 7 बजे आप सुन सकेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्रातः 7:31 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ब्रिज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे अपने पसंदीदा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम ब्रिज लोक लहरी। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर और सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे आपको सुनवाएंगे कुछ भजन। कलाकार होंगे अभिनव शर्मा। सामयिक चर्चा का समय होगा प्रातः 9:15 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम बाल गोपाल लेकर आएंगे प्रातः 9:30 पर। आज कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और उनमें छिपे जीवन मूल्य। दूसरी चर्चा का विषय रहेगा सही पोषण स्वस्थ जीवन की पहचान। प्रातः 10 बजे आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मुशायरा, जिसमें प्रतिभाग करेंगे जमील रौनक, टेकचंद शर्मा, मोहम्मद फिरोज और एमएस सिद्दकी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 10 बजे से। प्रातः 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भेंटवार्ता का, जिसमें विषय रहेगा नेत्रदान जानकारी और सुझाव। डॉक्टर मोहम्मद सुफियान दानिश से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। समय याद रखिए प्रातः 10:30 से। दोपहर 12:30 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे आशु रावत के गाए हुए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कलाकार होंगे बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर श्री चंद्रेश गोयल, ढोलक पर श्री अजय शर्मा और पर्कशन पर राहुल पराशर।

0: इस मास्क का गीत लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। 1:15 पर आपको सुनवाएंगे धर्मवती जी की लिखी हुई झलकी प्रेरणा, और इस झलकी के प्रस्तुति देंगे आर के त्रिपाठी। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ ही कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे ओपी सिंह और संजय सारस्वत। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दोपहर 1:45 पर, और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा। दूसरी सभा का आगाज होगा कार्यक्रम युवाणी के साथ संध्या 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा भगवती चरण वर्मा जयंती और जबरन गुमशुदा लोगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संध्या 6:15 पर सुनिएगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य मकरंद। आज कवि होंगे राकेश कुमार शास्त्री। संध्या वंदन कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:30 पर, और संध्या 6:50 पर सुनिएगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा, अधिक बारिश में फसलों को जल भराव से कैसे बचाएं। दूसरी चर्चा का विषय रहेगा कृषि में AI एवं डिजिटल तकनीक का उपयोग। इसी कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज के कार्यक्रम में लीजिए जानकारी पशुओं में चर्म रोग के विषय में। जानकारी दे रहे हैं देवेंद्र कुमार सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बरसात में जहां एक ओर गर्मी की अधिकता होती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण में नमी की मात्रा भी अधिक होती है। यह स्थिति मक्खी मच्छर और विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के विकास के लिए सर्वदा उपयुक्त होती है। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने में पशुओं की पर्याप्त ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी होती है, इसलिए प्रतिरोध क्षमता इस समय कम हो जाने के कारण बरसात के मौसम में वे शीघ्र ही विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं में एक रोग हो जाता है चर्म से संबंधित, उनकी चमड़ी से संबंधित। बरसात के दिनों में पशु के बार बार भीगने और सूखने के कारण विभिन्न प्रकार की फफूंदी जनित चर्म रोग तेजी से उनमें फैलते हैं, जिनमें दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसियाँ प्रमुख हैं। ये रोग पशु की त्वचा को खराब कर देते हैं तथा इनसे परेशान होकर पशु चारा दाना खाना छोड़कर केवल खुजलाता रहता है, जिससे उसका उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। चर्म रोगों में पेस्टोवेन और हेमेवेक्स मलहम का प्रयोग करके रोगों से बचा जा सकता है। जहाँ तक चर्म रोग से बचाव के लिए जो और उपाय हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है, पशु के शरीर पर मैल की पपड़ी आप न जमने दें, उसको नियमित रूप से नहलाएं। पशु को पानी में नीम की पत्ती उबाल करके अगर उससे नहलाया जाए तो चर्म रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। सप्ताह में एक बार खुरैरा अगर आप पशुओं पर करेंगे तो चर्म रोग के होने की संभावना खत्म हो जाएगी। पशुशाला की दीवारों और फर्श पर दरारें यदि हैं तो उन्हें मिट्टी या सीमेंट से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किलनी तथा जू जो हैं इन्हीं में छिपे रहते हैं और अंडे भी देते हैं। पशुशाला की दीवारों तथा छत पर समय समय पर मेलाथियान या नुवान आदि का छिड़काव करने पर ज़्यादातर बाह्य परजीवी जैसे कि मक्खी मच्छर हैं वे सब मर जाते हैं। पशुशाला की फर्श जो है सप्ताह में एक बार चूने के पानी या फिनाइल के घोल से छिड़काव करके धोना चाहिए। पशुओं को बरसात का जमा हुआ गंदा पानी न पिलाएं, अन्यथा उनके पेट के जो कीड़े हैं वो उनमें पनपेंगे और पशुओं को अन्य रोगों को ये बढ़ावा देंगे। चरी से

0: खंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आपने सुना गृहस्थी फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत था रवि का।

तलत महमूद की आवाज़ में आपने सुना नौबहार फिल्म का ये गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

चांदनी रात, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आमिर भाई और सादत की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत था नौशाद का।

गीत को लिखा था कमर जलालाबादी ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से नवाजा है ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज।

हावड़ा ब्रिज फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह

0: APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी के तहत मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम नागरिक की जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार कोर्ट से लेकर राजस्व परिषद के न्यायालयों तक 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित कर नियोजित प्रयासों के साथ निस्तारित कराया जाए। साथ ही धारा 33 के अविवादित विरासत के मामलों को मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन, IGRS में प्राप्त जन शिकायतों के संतुष्टि परक निस्तारण, राजस्व न्यायालयों की कोटवार समीक्षा और लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने चित्रकूट, फरुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी के जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत कार्य पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया के सलेमपुर और भाटपर रानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपये लागत की 80 लोकहितकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सुशासन का परिणाम है कि आज गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार व सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
4: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को

0: बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही राप्तीनगर क्षेत्र में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हर्मिनी कल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में टीम वर्क की अहम भूमिका होती है।
2: 108 देशों से बच्चियां आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से और जिन्होंने मिलकर शक्ति सैट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है, और बहुत खुश हूं मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़ पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज़्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते इस मिशन ने दिखाई है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
3: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं, और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
1: प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू की वर्तमान स्थिति को लेकर अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
4: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जाँच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। कल 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। प्रशासन और NDRF की ओर से चित्रकूट में राहत और बचाव का कार्य जोर शोर से चल रहा है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़

0: प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियां उफान पर। चित्रकूट में मंदाकिनी, वाराणसी और बलिया में गंगा ने किया खतरे के निशान को पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनवे वारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैयाओं आज रविवार को दिना और आज के दिना आप सुनो हो अपने ब्रजमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज लोक लहरी। परंतु आप जो सूचना अवश्य दे दें कि आज कछु तकनीकी समस्या के कारण आपके जो संदेश हैं वे हम तक प्राप्त नहीं है पा रहे हैं, लेकिन कछु पाती हैं जो हमारे संग अभी भी हैं तो उन पाती के आधार पर आपके नामन को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको जो लोग गीत सुनवे को मिले आज कार्यक्रम में वे सब आपको अच्छे लगें, आप सुनकर आनंदित हो। तो भैयाओं आपको पता ही है कि भाद्रपद मास लग गए हुए हैं और कुछ दिन बाद हमारे ब्रजमंडल में जो धूम मचे वारी है बाकी तैयारी तो प्रारंभ है चुकी है। तो ब्रजवासी हैवे के नाते जो हमारा मन है वो बड़ो परम उत्साह पे पहुंच जाए है, क्योंकि अब बारी है कृष्ण जन्माष्टमी और जा जन्माष्टमी के अवसर पर घर घर मंदिर द्वार और जितने भी हमारे गलीन चौबारे

में है ना, चौक चौबारे चाहे जहां भी घूम निकल जाओ, वहां पे एक अत्यंत अनोखी सज्जा देखने को मिले हैं। और कह सकें हैं कि जैसे भगवान के आईवे पे भक्त को जो हृदय है कमल खिल जाए हैं, वैसे ही हमारे नगर, हमारे मथुरा मंडल, समस्त प्रांत हमारे जो है, गांव गांव शहर शहर, ऐसा लगवे लगे है कि कुछ विशेष है व्यवहारों है। तो वास्तविकता भी यही होवे है कि कुछ विशेष तो है व्यवहारों है ही, तो बाकी तैयारी घर घर में प्रारंभ है गई है। कहीं घर में पकवान की तैयारी जुड़ गई है, तो कहीं सफाई चल रही है, कहीं ठाकुर जी के श्रृंगार पोशाक की तैयारी चल रही है, कहीं कछु मेवा मिष्ठान पक रहे हैं कि आए वारे त्योहार में हमें कैसे कैसे आयोजन करने हैं। और सब कुछ के बाद जो ब्रजवासी हुए हैं उनके मन में तरंग के साथ, उमंग के साथ लोकगीत जरूर गूंजे हैं, और वैसे ही स्वर गूंजे हैं जैसो समय आ जाए है। तो सबरे जो ब्रजवासी हैं वो मंदिर द्वार जा करके अपने ठाकुर को निहारेंगे, अपने घर में बैठे लाला को निहारेंगे, उसकी रूप माधुरी को पान करेंगे। और वैसे ही अनेक श्रद्धालुगण जहाँ जब जुटेंगे तो हमारी जो मेहमान नवाजी है वह देखेंगे, हमारे ब्रजमंडल की संस्कार वहाँ की परंपरा को निहारेंगे। तो हम सबको कर्तव्य बन जाए है कि ऐसे सुंदर हम अपने व्यवहार को बनाए रखें अपने आए वारे आगंतुकों के संग, मेहमान के संग, श्रद्धालुओं के संग, कि जो हमेशा अपने मन में वो याद लेके जाएं, तो हम ब्रजवासी इनको सदैव माथे सर लगाए के रखें। तो ऐसा तो हमारा व्यवहार है ही, और ने थोड़ी सावधानी बरत के कटुक जो स्वर हैं विन्हें छोड़ देवें, और अपने लाला को याद करते हुए सुंदर निर्मल स्वर में गाए उठेंगे, तो हमारे मन के तार भी बच जाएंगे, हमारे जो सुनने वाले कान हैं वह पवित्र रह जाएंगे। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें जय लोकगीत के संग, जय स्वर दीनो माधुरी शर्मा ने। तो भैया सब लोग आनंद लो जय लोकगीत को।

मेरो मन हर लियो। अब ये आपने सुनो जा लोकगीत को माधुरी शर्मा के स्वरण में। और अब आपसे मिले हैं नेक जे व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।

कार्यक्रम ब्रज माधुरी सुनबे बारे हमारे समस्त श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागत आपके अपने कार्यक्रम ब्रज माधुरी में। और अब आपकी पाती हमने अपने हाथन में ले भई है और

में। और अब आपकी पाती हमने अपने हाथन में ले भई है और पढ़ दे वे हैं, कौन कौन की फरमाइश आ सकेगी, जुड़ सकेगी हम संग। तो जे हमारे श्रोता हैं ग्राम गोपी की नगरियां ते, मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और उनके पापा मम्मी, ग्राम नगला पोला ते विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भूला, डुग्गू और इनके समस्त परिवारीजन, ग्राम नौधरा ते जुड़े भए हैं कोमल मास्टर, जशोदा, लाखन, तरुण, रोहित, चंचल, संजना और इनके पापा मम्मी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर ते जे हमारे श्रोता हैं अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा, और जे पाती है हमारे समक्ष मलोट कैंप पंजाब ते आई भई सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी, जे सारे हमारे श्रोता जुड़े भए हम संग पाती के माध्यम ते। और जे हमारे श्रोता हैं जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ते, ओम प्रकाश, सिलोचनी, खुमेंद्र, तुषारणी और खैरागढ़ ते, मोती लाल, भीमेन, सुशील, मेघा, नेहा और इनके समस्त परिवारीजन, पोटियां कला दुर्ग के श्रोता हैं हमारे संग संजय कुमार साहू, श्रीमती सुजाता, शशांक, सीमा साहू और पाकड़ा झारखंड से जुड़े हुए हैं श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, वासु और इनके पापा मम्मी। तो भैयाओं अब आपकी पाती के संग आपको सुनवावे हैं गीता अग्रवाल और सखियन की गायब है जा लोकगीत को।

गीता अग्रवाल और सखियन के स्वर में अभी आपने जा लोकगीत को सुनो, और अब लेवे हैं आपके नाम, पढ़े हैं आपके नक पाती, और जे हैं बड़ा बाजार उदयपुर ते गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, किरण सक्षम परी और लावण्या। गोधनी नागपुर से हमारे श्रोता हैं इलियाजर उज्जैनी और इनके परिवारीजन। परसा टोला छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता ओम प्रकाश सिया, सुलोचनी और तुषारणी मसिया। इनके संगई संग श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा ते हैं शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति। बेबी व्योमिनी गार्डगी नगर यवतमाल ते हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल वैष्णवी और साहब सिंह। सब्जी मंडी झज्जर से जुड़े भए हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक राजपूत। कृषि फार्म मिरवला महोबा ते नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र गौरव, जानवी राजपूत। जमशेदपुर ते जुड़े भए हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया। नवनीत छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं श्रीमती मीना शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा जलालाबाद से, सुरेश गगनेजा, विशाल दिशानी, निमित और इनके सभी संगी साथी। अब इन सब के अनुरोध पे सुनवावे आपको जा लोकगीत को, जय स्वर दीनो है ओम प्रकाश डांगुर ने।

शाम बड़ो छलिया बची रही हो गोरी। अब भाई आपने जालोकित को आनंद लियो। जय स्वर दीनो ओम प्रकाश डांगुर ने और इनके गाय भाई जाय लोकगीत के संग अब कार्यक्रम को समय है चलो है तो हमें आज्ञा दो आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। विकी स्वीकार करो हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को ही अब से थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का

0: कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
1: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
2: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
1: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
3: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधा कृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम

0: प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप टी20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुखपृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर

0: Angeli.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। अब से चंद पलों में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

उदित नारायण साधना सरगम की आवाज़ों में आपने सुना अनाड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि का, और आइए सुनते हैं इसी क्रम में कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

ये गीत है फिल्म परदेसी बाबू का, आवाज आनंद राज आनंद और अलका याग्निक की इनके साथ साथियों ने भी इस गीत पे आवाज दी है। संगीत और गीत आनंद राज आनंद का है।

0: सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शाहरुख खान के साथ साथियों की आवाज़ में आपने सुना परदेस फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: hey. What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your smile number? Karo kya dial number?
2: It's all right. It's all right. It's all right. It's all right.
3: हसीना मान जाएगी इस फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था अनु मलिक का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अभी ही पर समाप्त हुआ। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये

आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भजन। आज के कलाकार हैं अभिनव शर्मा।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं अभिनव शर्मा के स्वर में ये अगली रचना।

0: अभिनव शर्मा के गाए हुए इसी भजन के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त KV पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: भारत सरकार ने देश को एक वैश्विक खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने

0: का लक्ष्य रखा है। इस विजन को धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रदेश का एमएसएमई विभाग किस तरह से यीडा और इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, कैसे प्रदेश वाराणसी और चित्रकूट के खिलौनों को तकनीक से जोड़कर विदेशों तक पहुंचा रहा है, साथ ही गुणवत्ता मानकों, नई तकनीक, ऑनलाइन बाजार, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं को इस क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आयुक्त और निदेशक के विजेंद्र पांडियन जी। सर, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: भारत सरकार ने राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के माध्यम से देश को वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का एमएसएमई विभाग क्या भूमिका निभा रहा है?
1: देखिए, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्टर के रूप से है। 96 लाख को ऊपर का एमएसएमई यहाँ रजिस्टर्ड है। लगभग 1 करोड़ का एमएसएमई यहाँ काम करते हैं और यहाँ तो तकरीबन 14 से 20% एक्सपोर्ट में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रहता है और बहुत सारे आइटम्स में 60-70% तक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, वैसे कारपेट, टेक्सटाइल इत्यादि का। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ है ज्यादातर एमएसएमई ड्रिवन है। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार यहाँ एमएसएमई से मिलता है, इसलिए तो एमएसएमई का बेस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे वाइडर है।
0: जी, राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना जो है सर, उसके तहत पारंपरिक जो खिलौने हैं उनको और जो आधुनिक खिलौने को निर्माण है उसके बीच किस तरह का तालमेल स्थापित किया जा रहा है और इसको और विकसित करने के लिए क्या योजना अपनाई जा रही है?
1: देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे योजना चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में 2018-19 से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में उसका अच्छा योजना के रूप से फैल गया था। इस पे हम लोग 162 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, हर जनपद में कम से कम एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं और कुछ जनपद में 2-3 भी है। मान लीजिए वाराणसी में बनारस साड़ी भी है, वहाँ का वुडन टाइज भी है और वहाँ मीनाकारी वर्क भी है, इसी टाइप का मल्टीपल प्रोडक्ट भी है। उसी पे 162 आइटम को हम उसका पूरा वर्क करते हैं, प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट में, इत्यादि में। उसमें बहुत सारे जगह हमारा ट्रेडिशनल टाइस भी है, यानी मान लीजिए तो लकड़ी से बना हुआ टाई है, आज का नहीं, सदियों से पूर्वजों ने कर करके जो अपने बच्चे के देते हैं। मान लीजिए बनारस में हमारा लकड़ी से बना हुआ टाई बहुत फेमस है, चासा चित्रकूट में भी बनता है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। और कुछ नया सेगमेंट है, मान लीजिए झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, वहाँ स्टफ्ड टाइस बनाते हैं और कुछ जगह मीरठ है, जलौन है और बाकी जगह हमारा स्पोर्ट्स का टाइस बनता है। मतलब ये एक आधुनिक टाई भी है, पुराना भी है, वो दोनों का हमें नाता निभाना है, दोनों का कनेक्ट करना है। उस पर कितने ट्रेडिशनल आर्ट मेकर्स है, उन लोगों का हम नया तकनीकी हम समझाते हैं, कितने नया तरीके से टेक्निक कराने वाले उनको एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं, इसी टाइप का हम दोनों को ब्रिज करने के एक तरफ एमएसएमई काम करते हैं।
0: जी, आपने वाराणसी के और चित्रकूट के पारंपरिक खिलौनों का जिक्र किया, तो इन्हें नई पीढ़ी और नए बाजारों से जोड़ने के लिए किस तरह की योजना अपनाई जा रही है?
1: देखिए, हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 4 तरह का हम इंटरवेंशन करते हैं। एक तो प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग का इंटरवेंशन, जो पहले का जो कितने टेक्नोलॉजी कौन सी चीज में बना हुआ चीज है, उसको प्रोडक्ट का बिल्कुल आधुनिक करते हैं, यानी जो यूज करने वाले पेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके, मेक से लेके हम ध्यान देते हैं। और दूसरा उसका पैकेजिंग का है, आज का जो पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, जो पैकेजिंग अच्छा होता है उसका ही बिक्री अच्छा होता है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से हम करते हैं। दूसरा एक वर्टिकल हम काम करते हैं, उस पर हम मार्केट एक्सेस देते हैं, यानी ऑनलाइन में जोड़ते हैं उनका, अमेजन फ्लिपकार्ट से लेके जो कितने आधुनिक जो प्लेटफॉर्म होता है उनसे मार्केटिंग का व्यवस्था कराते हैं। तीसरा इन लोग का फंडिंग का व्यवस्था कराते हैं। हम लोग 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ तक का इस योजना का जो करने वाले का लाभ मिलता है, उससे 50 लाख तक हम सब्सिडी देते हैं, फाइनेंस से जोड़ते हैं और उनका जगह भी चाहिए उसी के सबसे जगह भी व्यवस्था कराते हैं। इसी टाइप का हम 4 वर्टिकल में हम काम करते हैं, ताकि जो प्रोड्यूसर है उनका जो प्रोडक्ट से लेके, मार्केटिंग से लेके, फाइनेंस से लेके, इवन जो उनका जगह है उसी के लेके जो भी समस्या है सबको एड्रेस कराते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक लगभग 7 लाख लोग का हम इस पे आगे हम बढ़वा चुके हैं इस योजना।
0: जी, आपने पारंपरिक कारीगरों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी जिक्र किया, तो हमें ये बताएं कि जो आधुनिक डिजाइन है और पैकेजिंग है, इसके साथ साथ ऑनलाइन बिक्री से जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं?
1: देखिए, आज का मैक्सिमम जो डोमेस्टिक मार्केट कहते हैं, यानी इंडिया के अंदर जो खरीदने वाले हैं, मैक्सिमम अभी ऑनलाइन में ही खरीदना पसंद करते हैं। और आज का 2-3 फेमस वेबसाइट है, पॉपुलर है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ONDC है और बाकी मिंत्रा, बहुत सारे वेबसाइट्स। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो कितने भी जो पारंपरिक प्रोड्यूसर्स है उनका प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइज कराते हुए इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग ऑनबोर्ड कराने के लिए प्रयास करते हैं। 2-3 लोग के साथ हमारा डीप MOU भी साइन हुआ है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट के साथ हमारा एक माइक्रो वेबसाइट बनाने के लिए भी एक MOU साइन हुआ है। फ्लिपकार्ट में अभी एक ODOP के लिए अलग फ्लिपकार्ट ने एक साइट ही बना रखा है और DTDC के साथ भी हमारा टाइप है। DTDC तो कहीं भी पहुंचाना तो वो पहुंचा देता है। फिर यहाँ पोस्टल के साथ भी हमारा टाइप है, पोस्टल भी कहीं भी किसी कोने से लेकर के एक जगह पोस्टल का पहुंचा देता है। इसी टाइप का जो कितने भी माध्यम हम अपना सकते हैं उतने अपनाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो गांव में बनाते हुए प्रोडक्ट भी आज के शहर में और इवन विदेश में जो रहने वाले कस्टमर का भी, ग्राहक का भी पहुंच जाए।
0: जी, आपने जिक्र किया वित्तीय सहायता का, तो खासकर जो इस

0: खिलौना बनाने के जो कारीगर हैं उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है और किस तरह की वित्तीय सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही है विभाग की ओर से?
1: देखिए, प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। प्रशिक्षण हम तो तीन चार तरह का योजना के अंदर प्रशिक्षण करते हैं। वन डे सिक वन प्रोडक्ट में हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो कितने लाभार्थी होते हैं उनका प्रशिक्षण हम लोग आधुनिक इंस्टीट्यूट से देते हैं। मान लीजिए हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हो गया और निफ्ट हो गया, जो कितने इंस्टीट्यूट है हमारा नेशनल लेवल का जो ग्रेडेड इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझ लें। दूसरा योजना हमारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसका अंदर जो 25 ट्रेड हैं मालाकार से लेके मूर्तिकार से लेके बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, उन लोगों को भी 10 दिन का हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट के साथ टाइप कराते हुए देते हैं। ये दो योजना तो हम करते हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति लोग का और पिछड़ा वर्ग जो लाभार्थी का अलग ट्रेनिंग 4 महीने का कोर्स हम कराते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ भी टाइप कराते हुए करते हैं और भारत सरकार का संस्था के माध्यम से भी टाइप कराते हुए करते हैं। इसलिए स्किलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उस स्किलिंग में बहुत सारे चीज वो अपग्रेड कर देता है और स्किलिंग के बाद वह साथ साथ हम लोग RPL सर्टिफिकेट एक इश्यू करते हैं, यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है। मान लीजिए ट्रेडिशनल जो उसका कार्मिक होगा, आर्टिसन होगा, कारीगर होगा, उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं रहता है, उसके वजह लोन नहीं मिल पाता, इंस्टीट्यूशनलिस्ट नहीं आ पाते, हम लोग उनका RPL सर्टिफिकेट दिलाते हैं। उसी की वजह उनका आगे भी भविष्य के लिए एक अच्छा एक रास्ता खुल जाता है।
0: जिस तरह से आपने बताया कि बहुत तरह फोकस करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जो युवा उद्यमी इस खिलौना निर्माण के बिजनेस में आना चाहते हैं या खिलौना निर्माण शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं हैं और खासकर प्रोत्साहन राशि के तौर पर जैसे आपने लोन का जिक्र किया, ऐसे कौन कौन सी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उसके बारे में?
1: उत्तर प्रदेश के MSME विभाग ऐसे विभाग है, तकरीबन 7 योजना हमारा है, तो आप लाभ ले सकते हैं। खासतौर पर स्टार्टअप कंपनी है और नया पीढ़ी किस पे आने चाहते हैं, ताकि इस पे मोटा मोटा बता दूं, ये जो आपका जो खिलौना का जो बिजनेस है वो इसका इंडिया का जो बिजनेस है $1.9 बिलियन का मार्केट है अभी इस समय में, वर्तमान समय। अभी आने वाले तो 3 साल में ये बढ़ने वाले $4.6 बिलियन का, और इसका हर साल कम से कम 10% बढ़ोतरी के हिसाब से बढ़ रही है। यानी ये सेक्टर फ्यूचरिक सेक्टर है और एक इसका मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाली है। और इस पे और एक अच्छाई भी है, जो पहले बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से बाकी कंट्री से इंपोर्ट होता था, वो अभी इंपोर्ट भी कम होने लगा, ताकि लोकल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उसका मार्केट के कैप्चर करना शुरू कर दिए। अभी फिलहाल हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंपोर्ट के लिए मेरा $370 मिलियन पिछले साल था, इस साल घट के हमारा 230 हो गया, वो घट रही है। यानी जो लोकल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसे ध्यान रखते हुए कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी युवा शुरू करने चाहते हैं, मैं सलाह देता हूं। एक हमारा स्कीम है CM युवा योजना, उसका अंदर 5 लाख का लोन आपका बिना ब्याज का बिना गारंटी का मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति 21 साल से 40 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति और केवल कक्षा 8 पास हो वो एलिजिबल है, ऑनलाइन में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगता है, 4 साल का ब्याज 0 है और आपका कोई गारंटी भी नहीं लगेगा, और ओवर एंड अबो 10% आपका सब्सिडी भी सरकार देती है। यानी आप लेते हैं हमसे 5 लाख रुपया, आप वापस करते हैं केवल 4.5 लाख रुपया 4 साल के अंदर इस किस्त में। ये तो 5 लाख तक का है, उससे ज्यादा किसको चाहिए? मान लीजिए 10 लाख का किसी का योजना चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त योजना है, उस पर भी ले सकते हैं, उस पर भी आपका 10% का अनुदान मिलेगा। और आप किसी का 25 लाख चाहिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर 25 लाख तक का आप लाभ ले सकते हैं, और ज्यादा भी बड़े स्केल में करना है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, उसमें 50 लाख तक का आप आराम से बिना गारंटी का कम सस्ते वाले ऋण का आप लोन ले सकते हैं। यदि आपको बड़े बिजनेस कराना है उसको 20 करोड़ तक का सिडबी के माध्यम से वेंचरिंग कैपिटल का लोन आपको दिला दे। इसलिए 5 लाख के लेके 20 करोड़ तक का अनेक योजना है, आप किसी भी लेवल पे एंट्री के हिसाब से आपका स्केल के हिसाब से आप उसको प्राप्त कर सकते।
0: महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए क्या कोई विशेष पहल की गई?
1: MSME में देखेंगे, MSME सेक्टर बेसिकली महिला ड्रिवन सेक्टर है उत्तर प्रदेश में। खासतौर पर 70-80% हमारा जो इंडस्ट्री है महिला से बैकअप है। खासतौर पर ODOP सेक्टर है, इस पर 80% महिला इन्वॉल्व है, एंड महिला जो नेचुरली वो आर्टिस्टिक रहते हैं उस पर, इसलिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारा टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट में उनका आधुनिक कंट्रीब्यूशन है। इसलिए नेचुरली हम महिला के ही इसको आगे करते हुए ले जा रहे हैं, उनको नेचुरल रुचि भी है और साथ साथ बहुत अच्छा काम भी करती है। और साथ अकेले हमारा विभाग नहीं, उस पे और एक विभाग का जो है NURLM कहता है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन का एक स्कीम चलता है, लखपति दीदी का योजना एक चलता है, उस पे भी बहुत सारे महिला समूह इसी से जुड़े हुए समूह को भी हम लोग बनाने के लिए मदद किए। उन लोग महिला समूह बनने के बाद हम इंडस्ट्री विभाग मिलते हुए उनका प्रोडक्शन लाइन में आगे ले चलते हैं उसपे। इसलिए महिला का ड्रिवन और महिला बेस्ड सेक्टर ही है ये, इसलिए जो महिला का हमेशा आगे।
0: जी, आपने जैसे कहा कि स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जा रहा है और वो भी आगे रहे, तो MSME विभाग जीडा और

0: ट्यूपी और अन्य विभागों के साथ मिलकर के ये खिलौना उद्योग के इकोसिस्टम को कैसे विकसित करने में मदद कर रहा है?
1: देखिए, एमएसएमई और सारे जो नोएडा गिड़ा में क्या है ना, ये जो भी सेक्टर डेवलप होता है क्लस्टर में डेवलप होता है। मान लीजिए हमारा जो वेस्टर्न यूपी का है क्लस्टर है, खासतौर पे मीरठ एंड अराउंड मीरठ, हमारा गाजियाबाद के आसपास अच्छा खासा एक स्पोर्ट्स का क्लस्टर बनी हुई है। स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टाइस का भी वहाँ क्लस्टर बन गया है नेचुरली। और दूसरा क्लस्टर है हमारा वाराणसी मिर्जापुर से सटा हुआ इलाका में और चित्रकूट से सटा हुआ इलाका में, ये ट्रेडिशनल लकड़ी से बना हुआ क्लस्टर है, ये अच्छा से उभर के आ रही है वहाँ नेचुरली। वहाँ बहुत सारे लाखों संख्या में आर्टिजन इस पे शामिल है। और यहाँ बुंदेलखंड रीजन में झांसी और चित्रकूट और ललितपुर इसी सेक्टर में सॉफ्ट टाइस का बनते हुए जो खिलौना है वो सेक्टर बन रहा है। हम लोग जो मेनली क्या है ना, जो जगह जगह पे मान लीजिए वेस्टर्न यूपी में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ईडा, ये तीनों लोग का प्रेजेंस अच्छा खासा है, उन लोगों के इंडस्ट्रियल स्टेट भी है। और उन लोगों के पॉलिसी में हम रिक्वेस्ट भी किए हैं बहुत सारे पॉलिसी में, इन लोगों का जो टाई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आरक्षण कराने के लिए और साथ साथ सब्सिडी देने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे भारत सरकार का पॉलिसी कब भी आएगा उसको अपनाएंगे। और राज्य सरकार भी जल्दी पॉलिसी बनने के स्थिति पे है, यदि हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बन जाएगा। अभी फिलहाल एमएसएमई पॉलिसी के हिसाब से हम आच्छादित कर रहे हैं उनको, जो भी लोग टाई मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है उनका जो जमीन खरीदने वाले में 100% स्टैंप के छूट मिलता है। और 25% हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, कितने भी उनका इक्विपमेंट्स लगा हो उसको कैपिटल सब्सिडी मिलता है। और यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट का चार्ज 100% गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। ये फिलहाल जो भी एमएसएमई सेक्टर है इतने तो वो ले सकते हैं। वो साथ साथ हम ईडा से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से मदद लेते हैं इन लोग का अलाटमेंट में, जमीन अलाटमेंट, किसी को जमीन चाहिए उनका अलाट करने के लिए कोई दिक्कत है तो फिर उसको कोऑर्डिनेट कराते हुए उनकी जमीन भी अलाट करवा।
0: आपने नोएडा का जिक्र किया तो वहां पे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हुआ है, तो बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने में ये किस तरह से मदद कर रहा है?
1: देखिए, जेवर तो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट के रूप से उभर के आ रहा है और सबसे बड़ा ये कमर्शियल कार्गो टर्मिनल का भी प्लानिंग चल रहा था। आप जान ही रहे हैं वहां का जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास इलाका का एक वरदान है जेवर एयरपोर्ट, और साथ साथ हमारा टाई मैन्युफैक्चरिंग का एमएसएमई का भी वरदान है। ताकि हमारा एक्सपोर्ट में ज्यादातर क्या होता है, ताकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट है, ताकि हम तो चारों तरफ लैंड से बंधे हुए हैं, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए दो ही माध्यम है। यदि तो हम फ्रीट कॉरिडोर माध्यम से मुंबई तक का हमारा पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो लाइट वेट होता है हमारा हवाई अड्डा के माध्यम से भेज सकते थे। अब ये एयरपोर्ट का कार्गो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह हमारे एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है बहुत गुना बढ़ गया है। अभी तो सॉफ्ट टाइस है, स्टफ टाइस है, जो कितने लाइट वेट टाइस है, आराम से हम हाई वैल्यू आइटम के साथ साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक तरफ वरदान है हम लोग का, इस पर अच्छा से लिवरेज करेंगे।
0: आपके अनुसार कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो भविष्य में खिलौना निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में उभरेंगे?
1: देखिए, ये इस पे दो क्लस्टर में नेम कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल रूप से वाराणसी एक नेचुरल क्लस्टर के रूप से उभर के आ रहा है और वहां भी एक इंटरनेशनल एयर कार्गो बन रहा है, इसलिए वहां से एक्सपोर्ट करने के भी संभावना ज्यादा है। वाराणसी अपने आप अपने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्टशिप के लिए पहचान है, लाखों लोग पहले से जुड़ चुके हैं, इसलिए उसका अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और नया जो आधुनिक टाइज जाने के लिए वो नोएडा एंड अराउंड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हब बन रहा है मेरा, जो मीरठ के आसपास स्पोर्ट्स के भी कुछ आइटम्स वो इस पे खिलौना में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ हमारे अपैरल का भी अच्छा बड़ा क्लस्टर है, इसलिए जो अपैरल से जुड़े हुए चीज को भी हम इसके खिलौना में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा अवसर, ये दो हमारा उभरते हुए क्लस्टर के रूप से आ रहा।
0: सर, आपने बताया कि जिस तरह से बड़े क्लस्टर के रूप में ये निकल रहे हैं, तो युवाओं के रोजगार के रूप में आप देखते हैं ये पूरा क्षेत्र कितना है रोजगार आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में विकसित करेगा?
1: देखिए, एमएसएमई का एक एवरेज एक रेशियो होता है, एक छोटी सी भी माइक्रो यूनिट के टाइनी यूनिट्स कहते हैं, वो भी तो 4 लोग को रोजगार देता है, और औसत हमारा एमएसएमई यूनिट का 7 लोग का रोजगार देने के लिए। अब मान लीजिए हमारा इसी सेगमेंट में 1 लाख भी यूनिट हमारा इस पे टाई मैन्युफैक्चर में खुल जाएगा, कम से कम 7 लाख से लेकर 10 लाख लोग का आराम से 1 साल के अंदर उन लोग को रोजगार मिल सकता है 1 साल में। और भविष्य में कम से कम मान के जा रहा हूं तो 50 से 60 लाख युवा के लिए रोजगार देने का अवसर इस पे है, अवेलेबल है।
0: निश्चित रूप से आपने जैसे बताया उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण के केंद्र के रूप में उभरेगा और बड़ी संख्या में रोजगार भी देगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार की खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक और आयुक्त KV पांडियन से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: FM 102.2 MHz पर ये

आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का प्रिय कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं फरहा खान।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: हमारे स्टूडियो में आज आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह इस बार भी बाल गोपाल कार्यक्रम में आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं नई नई बातें, जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। बच्चों मैं हूँ आपके साथ फरहा, तो चलिए करते हैं आपसे कुछ मस्ती भरी बातें।
3: बच्चों आज आकाशवाणी के आपके अपने कार्यक्रम बाल गोपाल में हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और मजेदार विषय पर, और विषय है सही पोषण स्वस्थ जीवन की पहचान। बच्चों जब गाड़ी में सही पेट्रोल या डीजल डलता है तभी तो वो बिना रुके तेजी से दौड़ती है ना बच्चों? ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक कमाल की मशीन है और इसका सबसे बेहतरीन ईंधन है संतुलित और सही पोषण। बच्चों अक्सर जब मम्मी कहती हैं बेटा हरी सब्जी खा लो, दूध पी लो, तो कई बच्चे मुंह बना लेते हैं, और अगर कहें कि चलो पिज्ज़ा या चिप्स खाते हैं तो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन बच्चों क्या आप जानते हैं पैकेट चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड खाने में भले ही टेस्टी लगें पर ये शरीर को सिर्फ सुस्त बनाते हैं। असली सुपर पावर तो हमें मिलती है ताज़ा और पौष्टिक खाने से। बच्चों अगर आपको पढ़ाई में नंबर वन रहना है, खेल के मैदान में सबसे तेज दौड़ना है और कभी बीमार नहीं पड़ना है तो आपकी थाली कैसी होनी चाहिए? चलिए बताते हैं। अपनी रोज की थाली को एक इंद्रधनुष यानी रेम्बो की तरह बनाइए। ऊर्जा के लिए रोटी, चावल, दलिया और ओट्स जो दिन भर खेलने कूदने की ताकत देते हैं। मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के लिए दालें, दूध, दही, पनीर, अंडे या अंकुरित अनाज जो आपको लंबा और ताकतवर बनाते हैं। और बच्चों बीमारियों से लड़ने के लिए ढाल हरी सब्जी, गाजर, खीरा और मौसमी फल जैसे सेब, केला, अमरूद और संतरा जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी दिन भर में 6 से 8 गिलास साफ पानी ताकि शरीर हमेशा तरोताज़ा रहे। और बच्चों आपके साथ साथ मैं आप सभी के माता पिता से भी एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चों की थाली में ज़बरदस्ती खाना परोसने के बजाय उसे रंग बिरंगा और थोड़ा दिलचस्प बनाइए। जैसे रोटी में पालक या चुकंदर का पेस्ट मिलाकर रंगीन रोटियां बनाएं, फलों की चाट में हल्का सा चाट मसाला छिड़कें या सादे दूध में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिलाएं। जब खाना देखने में सुंदर और स्वाद में हल्का फुल्का चटपटा होगा तो बच्चे खुद मांग कर खाएंगे। बचपन में डाली गई सही खान पान की आदतें ही आगे चलकर स्वस्थ जीवन की असली नींव बनती हैं। बच्चों सुबह की भाग दौड़ में अक्सर आपकी मम्मी को समझ नहीं आता लेकिन बच्चों का टिफिन ऐसा होना चाहिए जो झटपट बने, देखने में रंगीन हो और पोषण से भरपूर हो। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ आसान और मजेदार आइडियाज बताने वाली हूँ, जैसे रंगीन पराठे और रोल। सादे पराठे की जगह पालक, पनीर या कद्दूकस की हुई गाजर का रोल बनाएं। वेजिटेबल सूजी या ओट्स चीला, इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और मटर डालकर बच्चों को केचप के बजाय घर की हरी चटनी के साथ दें। फ्रूट्स और नट बाइट्स, टिफिन के छोटे से कोने में कुछ बादाम, अखरोट, किशमिश या सेब के कटे हुए टुकड़े जरूर रखें। पोहा या उपमा, मूंगफली और खूब सारी सब्जियों के साथ बना हल्का फुल्का नाश्ता जो दिन भर ऊर्जा देता है। तो प्यारे बच्चों आज से एक वादा खुद से करिए, जंक फूड को कहेंगे ना और घर के

0: ताजा पौष्टिक खाने को कहेंगे हाँ। याद रखिए, जैसा अन्न वैसा मन, और सही पोषण ही है स्वस्थ जीवन की पहचान। चलिए बच्चों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ता है पोषण एवं स्वास्थ्य के संदर्भ में। वार्ताकार हैं नीता जैन।
1: श्रोताओं, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो निश्चित तौर पर हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, या ये कहें कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण एक बहुत आवश्यकता हो जाती है। अब ये अच्छा पोषण कैसे हो, उसमें क्या क्या चीजें हम समावेशित करें अपने जीवन में और दिनचर्या में, किन किन चीजों को लेकर के आए, विशेषकर खाने के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हम उसको बनाएंगे, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता जैन साहब, जो वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार
2: नमस्कार।
1: जी। जब बात पोषण की चलती है, अच्छे स्वास्थ्य की चलती है, तो कई बार चीजों को लेकर लोगों को ये लगता है कि ये शायद बाहर से आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, बाहर से कोई चीज समावेशित करने की है। क्या थोड़ा सा जोड़ के बताएं कि एक पोषण से, अच्छे पोषक आहार से क्या आशय है, एक डॉक्टर के तौर पे आप क्या कहना
2: पोषण
1: चाहेंगे?
2: से हमारा आशय ये होता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी एज ग्रुप का, एक निश्चित मात्रा में उसको ऐसा खाना मिला जिससे उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट, ग्रोथ हो सके, जिससे कि वो स्वस्थ रहे, फिजिकली फिट रहे। ये नहीं है कि हम अच्छा महंगा खाना खाने से ही, ये नहीं कि वो पोषण आहार हम दे रहे हैं। तो बेसिकली खाना वही होना चाहिए जो आपके ट्रेडिशन, आपके कल्चर में जहां पे वो खाना है उसी में से हमें ढूंढना है कि हमको क्या खाना देना है जिससे कि ग्रोथ हो सके।
1: जी, मतलब जहां हम रह रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में और उन भौगोलिक स्थितियों में जो हमको मिल रहा है, उससे ही हमको आहार बनाना
2: आहार
1: है,
2: बनाना है।
1: बस उसमें संतुलन स्थापित करना है उसमें।
2: एग्जैक्टली
1: तो एक अच्छे आहार में जैसे सामान्य तौर पर भाई सब्जी होती है, दाल होती है, रोटी हम लेते ही हैं, चावल लेते हैं, दूध भी आ जाता है, कभी कभी फल और वो भी आ जाता है, तो यही चीजें मिलकर के
2: अच्छा।
1: अच्छे।
2: हाँ बिल्कुल। बैलेंस डाइट में सब कुछ सम्मिलित है जिसमें कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स। अब ये हमने जो नाम लिए हैं, जैसे प्रोटीन है, दालें हैं जितनी, उसमें हमें
1: प्रोटीन
2: प्रोटीन्स
1: मिलेगा
2: मिल जाएगा।
1: जी।
2: कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी खाएंगे,
1: हाँ।
2: रोटी चाहे वो आप गेहूं की खाएंगे, ज्वार बाजरा खाएंगे, उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे।
1: जी
2: फिर
1: जी
2: फैट्स, घी है, तेल है, इन सबसे, और बाकी मिनरल्स और विटामिन्स हमको हरी
1: हाँ,
2: सब्जियां जो
1: सब्जियों
2: होती
1: से।
2: हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें खाना जरूरी है, और अगर हम इनमें से किसी को भी स्किप कर देते हैं तो वो बैलेंस डाइट नहीं रह पाती है फिर।
1: कई बार मिथक ये है कि जब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं उसमें, हालांकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा विकसित समाज हो गया है, शहरों में हम रोते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद महंगा, महंगाई या महंगा खाना ही एक अच्छा खाना हो सकता
2: हाँ ये
1: है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, एक बैलेंस और संतुलित आहार, हम गुड़ से, मठा से,
2: बिल्कुल,
1: दही से या चने से,
2: बल्कि
1: इनसे
2: मैं
1: भी
2: तो
1: बना
2: ये
1: सकते हैं
2: कहती, बिल्कुल
1: जी।
2: बल्कि मैं तो कहती हूँ इन सब से अगर हम बनाएंगे तो वो ज्यादा ही पौष्टिक होगा, शरीर को लगेगा, और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। अब प्रचलन ये हो गया है कि लोग लो कार्ब्स लेने लग गए हैं, कि जो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं आज का हमारा जो युवा वर्ग है स्पेशली, तो वो पैक्ड फूड्स होते हैं, टिंड फूड्स हैं, उसके ऊपर ज्यादा जाने की, जिम जा रहे हैं तो वहां रेडीमेड प्रोटीन्स के आ रहे हैं पैक्स, वो इस्तेमाल, उधर से फिर अगर वेट इंक्रीज हो गया तो वो कहेंगे नहीं हमको तो कीटो डाइट खानी है। तो कीटो डाइट का ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी को खोखला कर रही हैं। तो इसमें तो हमको ये लेना है कि जो हमारे आसपास जो खाना अवेलेबल है जिससे कि हमें बैलेंस मिल जा रहा है, रोटी, चावल, अभी क्या कहते हैं, घी, घी के लिए बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नहीं घी
1: नहीं
2: नहीं
1: लेना,
2: खाना
1: नहीं लेना
2: है
1: जी।
2: ना, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। आप पहले की साइंस में ये होता था कि नहीं थोड़ा सा घी कम खाएं नहीं तो हमारी धमनियों में जम जाएगा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन हर चीज का एक बैलेंस्ड होना चाहिए जिसमें घी भी शामिल है, कि
1: जी
2: वो भी
1: जी
2: जरूरी
1: जी
2: है।
1: मतलब अगर हम एक अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, एक जीवन की दिनचर्या में

0: अगर हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो फिर घी से परहेज करने की आवश्यकता नहीं, ये आप कह रहे हैं। आपने कहा था ना उसमें कि आजकल सुविधा में और जरूरतों में ऐसा है कि सब चलता है, और हमने जहां चाहा जैसे चाहा जो चाहा वो खा लिया, उसका कोई समय नहीं, उसका कोई तरीका नहीं। तो ये युवा वर्ग में बहुत आ रहा है, आपने टिन की और उसकी बात की, तो ये कितना घातक है?
1: बहुत ज्यादा घातक है। अब खाने का अगर पता चले, वो सीधा सीधा डाइट ही मिस कर दे रहे हैं पता चले, जबकि ये होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी, सबसे ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट, देन लंच और डिनर। क्या होता क्या है कि दिनचर्या ही ऐसी हो गई कि लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया लोगों का, देर में जाग रहे हैं, लेट खा रहे, तो ब्रेकफास्ट का तो कोई सेंस ही नहीं रह गया। ब्रेकफास्ट ही नहीं तो वो तो सीधा पता चला 11 बजे उठ रहा है, तो ये स्किप हो जा रहा है पता चल, लेट नाइट आप जाग रहे हैं और आप लेट नाइट खा रहे हैं, तो उससे क्या है बॉडी का हमारा सारा बैलेंस ही गड़बड़ होने लगे, बायोलॉजिकली क्लॉक ही डिस्टर्ब हो रही है, तो वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और तरह तरह की बीमारियां लगने लग गई। तो मैं तो यही कहती हूँ कि टाइम टेबल शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन दिस।
0: जी जी, मतलब जो आहार और विहार शुरू में कहा गया है,
1: हाँ, वो
0: आज भी जरूरी है। हम कुछ भी करें, कहीं भी करें, कैसे भी करें, लेकिन जीवन में एक अनुशासन
1: बहुत जरूरी है
0: उसमें,
1: और अगर बीमारियों से निजात पाना है तो, और अपनी बॉडी को
0: आपने शुरुआत में इम्यूनिटी की बात की थी, हमने इस बात को कोरोना काल में बहुत सुना और देखा कि लोगों ने कहा कि अगर हमारी इम्यूनिटी है तो हम बच जाएंगे। अब वो इम्यूनिटी एक जो है नया शब्द था, लोगों को सुनने में ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ गया, इम्यूनिटी होती क्या है, तो थोड़ा सा बताएं हमारे बहनों को और भाइयों को कि इम्यूनिटी कोई नई चीज नहीं है, ये लोगों रोगों से लड़ने की एक क्षमता है
1: होती
0: और जो सबके पास होती है।
1: बिल्कुल, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी में खुद ही है, हम जितने हष्टपुष्ट होंगे, हमारा बॉडी जो है बाहर कोई भी कीटाणु अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो तभी कर पाएगा अगर हमारी बॉडी वीक होगी, और हमारी बॉडी तभी वीक होगी अगर हम ढंग से अपना पोषण आहार नहीं ले रहे। और पोषण आहार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हर चीज से मिलता है, चाहे वो दूध है, दही है, मट्ठा छाछ जो गाँव में मिलता है, गुड़ चना एवरीथिंग सब
0: वो उनको भूल जाते हैं, जो चीजें गांव में ही पैदा हो रही हैं, चाहे वो पालक है, चाहे चौलाई है, चाहे जितनी भी हरी सब्जियां हैं फल, वो तो वहीं से आ रहे हैं। और कई बार हम दूसरों को खिलाते रहते हैं मट्ठा की और गुड़ की, आपने बात की, तो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है, ग्रामीण जो संस्कृति है, वहां बल्कि खाने पीने की ज्यादा अवसर है, हम उनको देख नहीं पा रहे।
1: हाँ जी बिल्कुल अवसर है, लेकिन क्या है अभी हमारा थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से वो अपने थोड़ा सा मॉडर्नाइज होने के चक्कर में वो अपनी जो कल्चर है उसको छोड़ रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं पिज्जा पैटीज बर्गर जो जंक फूड्स हैं उसकी तरफ, बच्चा बच्चा बड़े सभी सोचते हैं कि दैट इज मोर बेनिफिशियल, जबकि उससे हमारी बॉडी को कुछ मिल नहीं पाता है। वो थोड़े टाइम के लिए आपकी टेस्ट बड्स है, हमारे जीभ का स्वाद तो दे देंगे, लेकिन अगर हम बॉडी को कहें कि वो उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे कि उससे पोषण मिल पा रहा है,
0: उसको भी यदा कदा आप ले सकते हो, कहीं आधुनिकता के नाम पे उससे कोई हमें ऐसा परहेज नहीं,
1: लेकिन अगर हम
0: लेकिन हमारी जो संस्कृति का जो खाना है जिसको हम कहते हैं कि किचन आज हम कहते हैं, लेकिन पहले वो रसोई थी, वहाँ एक तरह से प्रसाद बनता था, उस प्रसाद में पैदा रस ही उसको रसोई बनाता था, तो हम अपने भोजन को खाने की तरफ न ले जाकर के अगर हम उसे प्रसाद के रूप में लाएंगे और वो बनाएंगे जो हम अपने ईश्वर को या आराध्य को या अपने देवता को खिलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो तो संपन्न नहीं होगा, और उस भाव में खाएंगे तो शायद बेहतर कुछ हो पाएगा।
1: बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन यह बस हमारी सोच होनी चाहिए इस तरह की कि हम इस तरह का खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को लगे भी और पोषण मिले, जिससे कि बॉडी बिल्ड हो।
0: जी जी, तो अब क्या कहना चाहेंगे कि ये चाहे पोषण आहार का हम सप्ताह मना रहे हो, पखवाड़ा मना रहे हो या महीना मना रहे हो, ये इसके मनाने के पीछे के उद्देश्य यही होते कि भाई हम उन चीजों को एक बार देखें, समझें, और समय समय पर जो चीज जरूरतें पैदा हो रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, कहीं कुछ चीज को छोड़ना है, उसको नए रूप में स्वीकार करना है, तो वो आहार विहार भी हमारा है, हम भोजन को भी उससे अलग नहीं कर सकते। आज के संदर्भ में कुछ नई चीजें आ गई हैं, लेकिन पुरानी चीजों को भी नए परिप्रेक्ष्य में लेने की और उनको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है, यही इन चीजों का उद्देश्य होता है।
1: बिल्कुल, गवर्नमेंट हमारा मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है, ये पूरा माह ही उनने पहले तो

0: एक वीक था, फिर उसको इंक्रीज कर दिया कि पूरा महीना ही
1: महीना
0: है।
1: ही कर दिया है
0: हाँ,
1: जी
0: तो उसमें पोषण को बहुत ज्यादा वो मोटिवेट कर रहे हैं, और
1: जी
0: इसको गांव गांव हर घर से, और वो हर घर को आशाओं के माध्यम से मोटिवेट कर रहे हैं कि घर में कोई भी बच्चा या गर्भवती स्त्री कुपोषित ना रहे, चाहे। तो उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। अब जैसे महीने का एवरी 9th, तो वो गर्भवती स्त्रियों को, जिसमें वो हॉस्पिटल आके अपना
1: जी जी
0: रजिस्ट्रेशन कराती हैं,
1: जी
0: और वहां पे थोड़ा सा उनको आहार भी दिया जाता है, जस्ट फॉर, मतलब एक तो ये सैंपल के तौर पर है कि
1: जी
0: आप
1: जी
0: ये खाएं जिससे कि आपको पोषण मिले। उसी तरह से बच्चों को भी घर घर जाके आशाएं उनको मोटिवेट करिए, और उनको ऑनरेरियम भी दिया जा रहा है आशाओं को, जिससे कि वो और ज्यादा अपना काम कर सके, और

0: दिया जा रहा है आशाओं को, जिससे कि वो और ज्यादा अपना काम कर सके। और वहां अगर कोई भी कुपोषित बच्चा उनको मिलता है तो टाइमली एनआरसी सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहां पर लाकर बच्चों को वो दिखाएं और वहां पे एडमिट कराएं, फिर वहां पर तो वहां पे उनको एडमिट करके फिर उनका आहार किस तरह से दिया जाना है, टाइम टू टाइम उनकी नर्सिंग होनी है और उसका रिजल्ट देखने में आता
1: तो
0: है।
1: तो आपको लग रहा है कि ये जब प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से, चाहे आशाओं के माध्यम से, चाहे अपना जो आंगनबाड़ी के जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को जोड़ करके गांव के स्तर पर ही हम कर रहे हैं, इन सब चीजों से थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और जो जो शासन प्रशासन की जो सुविधाएं उनका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं,
0: लाभ ले रहे हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जितना गवर्नमेंट कर रही है उसके कंपेरिजन में इन टोटल पूरा तो नहीं है, लेकिन वो ये बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो धीमे धीमे करके ये प्रयास करके लोगों को जागरूक करके मेरे आगे इम्प्रूवमेंट ही होना है और हो रहा है,
1: उसमें हो रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगी चलते चलते कि भाई हम जो चूंकि जच्चा बच्चा एक बड़े ऐसे फेस से निकलता है, वहां एक नवजीवन तो आता ही है, लेकिन जो हमारी जच्चा होती है वो भी एक नए जीवन में जाती है और वहां कई बार जानकारी के अभाव में, समझदारी के अभाव में कई बार मिसहैपनिंग भी हो जाती है, तो इन सब चीजों से जैसे आपने कहा कि नौवीं तारीख इसीलिए की है कि भाई जैसे ही कोई गर्भवती बहन होती है तो वहां आए कम से कम रजिस्ट्रेशन कराए,
0: रजिस्ट्रेशन कराएगी
1: और जो सुविधाएं मिल रही है उनका
0: मतलब जानकारी उनको मिलेगी,
1: जानकारी
0: मिलेगी, थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता है उनको, वो चार और महिलाओं से मिलती हैं तो जिससे कि उनका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो जानने लग जाती कि हमारी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें आगे और क्या करना है। अपने लिए खुद इम्पोर्टेंस पैदा हो जाने से चीजें जो है बड़ी सरल हो जाती
1: एक्सपोजर मिलता है, नए एनवायरमेंट में आती है, नए लोगों से मिलती है, अनुभव मिलते हैं, डॉक्टर की सलाह मिलती है, तो वो और ये लगता है कि नहीं बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे उससे प्रसव से पहले के टीकाकरण हो, तो ये सुविधाएं हैं, तो अगर हम इनका ले लेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं, ये जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और उसको अपना रहे हैं लोग उसमें। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते और कुछ?
0: हाँ, मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि ये पोषण माह चल रहा है, ये पोषण माह एक माह ना होके आप सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि खाना जो भी खा रहे हैं पोषण आहार लीजिए, समय से लीजिए, इसके लिए डिसिप्लिन रखिए और खाने में हर चीज सम्मिलित होनी चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और तभी एक स्वस्थ समाज बनेगा, ये स्वस्थ देश होगा।
1: जी तो श्रोताओं, आप थी डॉक्टर नीता जैन साहब और जानकारी दे रही थी, आपको समझा रही थी और उनकी भावना भी यही थी, मैसेज भी यही था कि जिस पोषण की हम बात करते हैं उसी से इम्यूनिटी पैदा होती है, उसी से रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है, तो और वो कोई महंगा नहीं होता, वो कोई बाहर से नहीं लाया जा रहा है, जो हमारे आसपास है, जो है पुराना वो ही मिला करके अगर हम समय और अनुशासन से तरीके से लेंगे तो ये हम स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। मैडम आई, जानकारी दी, आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: प्यारे बच्चों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, वार्ता थी पोषण एवं स्वास्थ्य के संदर्भ में, वार्ताकार थी नीता जैन। तो चलिए बच्चों, आज के बाल गोपाल कार्यक्रम में हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां यशोदा मैया का वात्सल्य है, माखन की खुशबू है, यमुना किनारे की शरारतें हैं और हर एक नटखटपन के पीछे छुपा है जिंदगी का एक अनमोल सबक। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और उनमें छुपे जीवन मूल्य। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे एक आईना है जो बच्चों को जीने की कला सिखाती हैं और बड़ों को बच्चों की मासूमियत समझने का नजरिया देती हैं। तो आइए सुनते हैं कन्हैया की उन प्यारी प्यारी लीलाओं की सीख। बच्चों, हम सब जानते हैं कि कान्हा जी के घर में गायों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे अपने सखाओं के साथ गोपियों के घरों में मटकियां फोड़कर माखन चुराते थे। भला क्यों? कान्हा जी कभी अकेले माखन नहीं खाते थे, वे अपने साथ ग्वालों और बंदरों तक को खिलाते थे। यह हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है उसे अकेले नहीं बल्कि सबके साथ साझा करके खाने में ही असली आनंद है। उस दौर के गोकुल का सारा ताजा माखन राजा कंस के दरबार में कर यानी टैक्स के रूप में

दिया जाता था और गांव के बच्चे भूखे रह जाते थे। कान्हा जी का माखन चुराना दरअसल बच्चों को उनका पोषण दिलाने का एक सुंदर माध्यम था। तो बच्चों, यह सिखाता है कि न्याय और समानता के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। और बच्चों, अब बात करते हैं कन्हैया और कालिया नाग के प्रसंग की। बच्चों, यमुना नदी में कालिया नाग के विष से सारा पानी जहरीला हो गया था। पेड़ पौधे सूख रहे थे, पक्षी गिरकर मर रहे थे। तब बाल कृष्ण गेंद लेने के बहाने यमुना में कूदे और कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए उसे वहां से दूर भेज दिया। बच्चों, सदियों पहले बाल कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमारी नदियाँ, पेड़ और जल स्रोत कितने पवित्र हैं। उन्हें साफ रखना हमारा कर्तव्य है। आज जब हम प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो कान्हा जी की यह लीला हमें अपनी प्रकृति और नदियों को बचाने की सबसे बड़ी सीख देती है। निडरता और साहस। कान्हा जी ने संकट से डरने के बजाय सीधे उसका सामना किया। बच्चों को यह समझना चाहिए कि जब जीवन में कोई मुश्किल आए तो डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और साहस से उसका हल निकालना है। और बच्चों, गोवर्धन पर्वत की लीला तो आपको याद ही होगी। जब इंद्रदेव के क्रोध से लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी, तब नन्हे कान्हा जी ने अपनी छोटी उंगली कनिष्ठा पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बाकी सभी गांव वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाकर पर्वत को सहारा दिया। बच्चों, कान्हा जी अकेले भी पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे समाज को साथ जोड़ा। जब सबने अपनी अपनी लाठियां लगाई तो सबका योगदान शामिल हुआ। यह लीला हमें सिखाती है कि बड़ा से बड़ा लक्ष्य अकेले नहीं बल्कि संगठन और आपसी सहयोग से ही हासिल होता है। कान्हा जी ने कहा कि जो पर्वत हमें चारा, फल और पानी देता है, पहले उसकी पूजा करो, यानी हमें उस हर चीज के प्रति आभारी होना चाहिए जो प्रकृति हमें देती है। और बच्चों, एक और बेहद प्यारी घटना है, यशोदा मैया द्वारा कान्हा का मुंह खुलवाना। बच्चों, जब बलराम जी ने शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है, तो यशोदा मैया ने डांटते हुए कहा, मुंह खोलो। और जैसे ही नन्हे कान्हा ने मुंह खोला, मैया को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड, तारे, नदियां और समस्त दृष्टि दिखाई दे गई। बच्चों, हमारी यह मिट्टी, यह धरती कितनी अनमोल है। और दूसरी बात, हर साधारण सी दिखने वाली चीज के भीतर एक असीम संभावना और दिव्य शक्ति छुपी होती है। किसी को भी कमतर या छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहाँ मैं बाल गोपाल कार्यक्रम को सुन रहे सभी प्यारे माता पिताओं से भी एक बात कहना चाहूँगी, यशोदा मैया और बाल कृष्ण का रिश्ता हमें सकारात्मक पेरेंटिंग सिखाता है। कान्हा नटखट थे, पर यशोदा जी ने कभी उनके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने अनुशासन भी सिखाया, लेकिन हमेशा प्रेम और वात्सल्य के साथ। बच्चों की जिज्ञासा उनकी ऊर्जा और उनकी शरारतों को दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा में मोड़ना ही सच्ची परवरिश है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कान्हा जी की बांसुरी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, दिल में हमेशा मिठास और संगीत बनाए रखिए। उनका मोरपंख सिखाता है कि हर रंग को अपनाइए और खुश रहिए। तो बच्चों, आज की इस बातचीत से हमने सीखा, मिल बांट कर खाना, प्रकृति और नदियों से प्यार करना, दोस्तों के साथ मिलकर चलना और हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करना। तो चलिए बच्चों, अपने भीतर के उस नन्हे बाल गोपाल को हमेशा जिंदा रखिए। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: प्यारे बच्चों, अभी आपने ये गीत सुना और अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का और हमारे कार्यक्रम का पता बताने का। तो जाते जाते बता देते हैं कार्यक्रम का पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003। बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम। आज आपको सुनवाते हैं मुशायरा। इस मुशायरा में प्रतिभाग कर रहे हैं जमील रौनक, टेक चंद शर्मा, मोहम्मद फिरोज और MS सिद्दीक। आइए सुने ये कार्यक्रम मुशायरा।
3: सामाई नजरात,

0: है
1: बहुत बढ़िया।
0: कि मैं जब भी गम में होता हूँ नींद आती नहीं उसको,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: कि मैं

0: हैं बहन जब याद करती हैं चिट्ठियां भेज देती हैं।
1: सामेईन हजरात, ये थे टेकचंद शर्मा जी। कलाई सूनी देखती हैं तो बहन राखियां भेज देती हैं। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ एम एच सिद्दीकी साहब बशर मथरावी से, वो अपना कलाम पेश करें। और इसके साथ ही एक कथा पेश करता हूँ उनके नाम के लिए कि राह जुल्मात में इंसान भटक जाते हैं, राह जुल्मात में इंसान भटक जाते हैं, चांद तारों का फलक पर जो बशेरा ना रहे। और हमने ये सोच कर राहों में जलाए हैं चिराग, हमने ये सोच कर राहों में जलाए हैं चिराग ताकि दुनिया में किसी सिमत अंधेरा ना रहे।
2: बहुत बात, बहुत बात, बहुत
0: बात, क्या बात।
1: मैं गुजारिश करता हूँ एम एन सिद्दीकी साहब से, वह अपना कलाम पेश करें।
3: मुलाजा हो चार में से पेश कर रहा हूँ गजलपुर।

और चरण सेवा पेश कर रहा हूँ कि जिस हाल में हैं आप उसी हाल में हम हैं जिस

0: मियाँ और
1: और भी
0: मियाँ।
1: है, ये
0: वाह
1: है लिया
0: वाह
1: के मियाँ
0: वाह,
1: और भी है, क्या बात।
0: ये बड़े शायरों के शेर सुना रहा हूँ आज मैं तुम्हारे लिए। हाँ, बेटे ने उसके छेड़ दी कल चंद बीवियाँ, बेटे ने उसके छेड़ दी कल चंद बीवियाँ, अकबर जमी में दहशते योगी से गड़ गया।
2: क्या बात है
3: अकबर,
0: बेटे ने उसके छेड़ दी कल चंद बीवियाँ, अकबर जमी में दहशते योगी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका बंगला वो क्या हुआ, कहने लगे कि कल ही जमी से उखड़ गया। बुलडोजर चल गया।
2: क्या
0: बस नाम को ही दोस्तों शादीशुदा हूं मैं, बस नाम को ही दोस्तों
3: शादी,
0: शादीशुदा हूं मैं, बीवी को साथ रखने का अरमान तो गया।
3: अच्छा
0: बस नाम को ही दोस्तों शादीशुदा हूं मैं, बीवी को साथ रखने का अरमान तो गया। नसबंदी होके आई तो अब्बू से कह दिया, दद्दू ना बन सकोगे सामान तो गया। बस नाम को ही दोस्तों शादीशुदा हूं मैं, बीवी को साथ रखने का अरमान तो गया। नसबंदी होके आई तो अब्बू से कह दिया, दद्दू ना बन सकोगे सामान तो गया। फंसे कुछ इससे भी ज्यादा हिम्मत का शेर और देखो एक। फंसे कुछ इस तरह परसों के ना खींचे से हम निकले, फंसे कुछ इस तरह परसों के ना खींचे से हम निकले, बड़े बेआब रूह हो के तेरे नीचे से हम निकले। जान अगर है प्यारी तुमको बरसातों के मौसम में, जान अगर है प्यारी तुमको बरसातों के मौसम में, मेरे घर से दूर ही रहना मेरा घर गिर सकता है। दीवारें भी चटक रही हैं जंग लगा है सरियों में, दीवारें भी चटक
1: चटक
0: रही
1: रही
0: हैं
1: है जंग
0: जंग
1: लगाए
0: लगा
1: सरियों
0: है
1: में।
0: सरियों में, कितने ही लोगों को लेकर एक दिन वो मर सकता है। और बिंझारों के झगड़े को तुम छत पर से भी मत देखो,
1: बिंजारों के झगड़े को,
0: बिंझारों के झगड़े को तुम छत पर से भी मत देखो, थानेदार तुम्हें भी आकर जिप्सी में धर सकता है। तो देखने वालों ले जा पुलिस पकड़ के, लड़ने वाले भाग जाते हैं। बिंझारों के झगड़े को तुम छत
1: छत
0: पर
1: पर
0: से
1: से
0: भी
1: भी
0: मत
1: मत
0: देखो,
1: देखो,
0: थानेदार तुम्हें भी आकर जिप्सी में धर सकता है। कहता है फिरोज हमेशा तू अपनी ससुराल न जा,
2: क्या बात है,
0: कहता है फिरोज हमेशा तू
1: तू
0: अपनी
1: अपनी
0: ससुराल
1: ससुराल
0: न जा, पत्नी का वो पहला आशिक हमला भी कर सकता है। कहता है फिरोज हमेशा तू अपनी ससुराल न जा,
1: पत्नी
0: पत्नी का
1: का
0: वो
1: वो
0: पहला
1: पहला
0: आशिक
1: आशिक
0: हमला
1: हमला
0: भी
1: भी
0: कर
1: कर
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है।
0: खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि चढ़ टावर पे जैसे तैसे, टावर पे, खुदी को कर बुलंद इतना कि चढ़ टावर पे जैसे तैसे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता उतरेगा आप कैसे।
3: अभी अभी फिरोज भाई बहुत ही अच्छा कलाम पेश, मजाहिया कलाम, और सबको हंसा हंसा कर उन्होंने लोटपोट कर दिया। और इसके बाद मैं जमील रौनक आप लोगों के सामने अपना कलाम पेश करता हूँ।
0: इरशाद,
3: गुजारिश है कि तवज्जे के साथ सुने। मोहब्बत का जमाने में है चर्चा आम लोगों में,
0: बहुत अच्छे।
3: मोहब्बत का जमाने में है चर्चा आम
0: आम लोगों
3: लोगों में, और मोहब्बत हो चुकी है आजकल बदनाम लोगों में।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: मोहब्बत
1: हो चुकी,
3: शुक्रिया,
0: हो चुकी
3: है आजकल बदनाम लोगों में, और वफा और बेवफाई की तो बातें सुन चुके हैं हम। वफा और बेवफाई की तो बातें सुन चुके हैं हम। मोहब्बत हो रही है आजकल नीलाम लोगों में।
1: क्या बात रौनक साहब,
3: मोहब्बत
1: क्या बात
3: हो रही है आजकल
1: नीलाम
3: लोगों
1: लोगों
3: में। मोहब्बत का जमाने में है चर्चा आम लोगों में। इसी मौजू पर मैं कलाम पेश करता हूँ। गजल का मतलब समाज फरमाए, जुनूने इश्क का होगा असर आहिस्ता आहिस्ता, जुनूने इश्क का होगा असर आहिस्ता आहिस्ता, जुनूने इश्क का होगा असर

0: और उठेगी इस तरफ उनकी नजर,
1: आहिस्ता
2: आहिस्ता, क्या बात है, क्या बात है,
0: उठेगी इस तरफ

0: इधर बढ़ता गया दर्दे जिगर,
1: आहिस्ता आहिस्ता, क्या
0: आहिस्ता
1: बात है रौनक साहब,
2: बहुत अच्छे है,
0: शुक्रिया।
2: बहुत खूब।
0: इधर बढ़ता गया दर्दे जिगर, आहिस्ता।

0: खुशी की भी कभी होगी सहर।
1: आहिस्ता आहिस्ता, वाह वाह वाह, क्या बात रानू साहब।

0: खुशी की भी कभी होगी सहर,
1: आहिस्ता
0: आहिस्ता। और अगला शेर देखें,
2: लबों से छीन ली किसने हंसी गुल और कलियों की, लबों से छीन ली किसने हंसी गुल और कलियों की, गुलिस्तां में ये फैली है खबर, लबों से छीन ली किसने हंसी गुल और कलियों की, गुलिस्तां में ये फैली है खबर, आहिस्ता आहिस्ता। दिलों पर छोड़ता है एक असर ये शायरी का फन,
3: बहुत खूब,
1: वाह
3: वाह,
0: तवज्जो से
3: इरशाद।

0: बिछड़ते जा रहे हैं हम सफर आहिस्ता आहिस्ता।
1: क्या बात जमील साहब।
0: बिछड़ते मुझे किस मोड़ पर तकदीर लेकर आ गई यारो, बिछड़ते जा रहे हैं हम सफर।

0: के सुपुरद छोड़कर हमने निशा मंजिल के पाएंगे मगर
1: आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा।
0: सफीना कर दिया मौजों के सुपुरद छोड़कर हमने निशा मंजिल के पाएंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता। और आखिरी शेर है, गया मौसम खिजा का हर तरफ रौनक है गुलशन में, गया

लगे फल देन अब उजड़े शजर आहिस्ता आहिस्ता। गया मौसम खिजा का हर तरफ रौनक है गुल।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज संध्या 7:30 से आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम थाईलैंड के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। इस दौरान आप हमारे सभी कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए लगातार सुन सकेंगे।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है भेंट वार्ता, नेत्रदान जानकारी एवं सुझाव। डॉक्टर मोहम्मद सुफियान दानिश से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह। आइए सुने ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओ, दुनिया कैसी लगती है ये हम अपनी आंखों से देखते हैं तब उसको जानते हैं। दुनिया की रंगीनी अगर आंखें न बता पाएं तो शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे। कल्पना करें ऐसे लोगों की जिनके पास दृष्टि नहीं है, देख नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारण बस अपनी नज़र खो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में आने से पहले उनकी नज़रें नहीं थीं। तो शायद इसीलिए जब साइंस ने प्रगति की, विज्ञान ने प्रगति की, तो अंग दान की बात हुई और अंग दान में सबसे पहले हमने आँखों को दान होते हुए देखा। तो नेत्र दान, महादान शायद इसीलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दुनिया देखने के लिए अगर हम कुछ योगदान कर पाएं, अपने जाने के बाद भी अगर जिंदा रहना

0: चाहते हैं इस दुनिया में, तो शायद आंखें दे करके जाएं तो ये सबसे बड़ा काम होता है। नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है और इस नेत्रदान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, कौन हमारी मदद कर सकता है, कैसे इसकी ओथ लेते हैं, परिवार के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, तो ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ सुफियान दानिश साहब हैं, वरिष्ठ नेत्र रोग सर्जन हैं और कल्याणम करोती में आप काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार
1: नमस्कार सर।
0: जी। तो बताइए कि ये जो नेत्रदान से जुड़ा हुआ एक संकल्प है, कोई व्यक्ति अगर करता है तो
1: जी
0: वो पूरा कैसे हो सकता है, बताइए थोड़ा सा खोल के कि नेत्रदान दरअसल है क्या।
1: पहले तो नेत्रदान किस चीज़ को बोलते हैं? लोग नेत्र से आंखों का कौन सा भाग समझते हैं? पूरी आंखों
0: जी
1: का
0: जी
1: दान
0: जी
1: होता है या उसमें से कुछ भाग का दान होता है, ये समझना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। और इससे जुड़ी कुछ अंधविश्वास जो लोगों के दिमाग में भरी हुई हैं, कुरूपता, अगले जन्म में अंधता हो जाएगी, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे नेत्रदान का मतलब होता क्या है। इसमें आँख में जो छठा भाग है आगे का, पुतली बोलते हैं उसे, सिर्फ उसका दान लिया जाता है, उसका दान किया जाता है। बेसिकली उसमें हम लोग, जो इंसान जिसने प्लेज किया है, जिसने शपथ ली है कि वो नेत्रदान करेगा, उसकी मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर हमें वो आंखों में जो पुतली होती है, पुतली वाला भाग निकालना होता है। अगर हम उससे ज़्यादा देरी करते हैं तो वो आंखों की जो प्रादर्शी पुतली है वो ख़राब हो जाती है।
0: जी
1: अब इसको, शपथ को आप पहले भी ले सकते हैं, आपके परिवार से आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वो भी वॉलंटरीली दान के लिए बोल
0: कह
1: सकते
0: सकते हैं
1: हैं,
0: जी।
1: हॉस्पिटल में बोल सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जो सिर्फ नेत्रदान पे ही काम करते हैं, जिनके पास आई बैंक्स हैं, वहाँ पे आप नेत्रदान के लिए प्लेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं, आपके परिवार से कोई भी एक बंदा उसको आगे फॉरवर्ड करवा सकता है आपकी मृत्यु के बाद।
0: यानी नेत्र दान अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले कि जिस व्यक्ति ने विलिंग ली है, क्योंकि वो तो उस समय नहीं होगा, तो उसके नियर एंड डियर्स हैं जो परिवार के लोग
1: जी
0: हैं, मुझे लगता है उनका जो योगदान है या उनका जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी
0: क्योंकि व्यक्ति जब जा रहा होता है
1: जी
0: तो हॉस्पिटल को तो नहीं पता, एनजीओ को तो नहीं पता, वो लोग ही इसमें फिर उसके संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आएंगे और उनकी जो इच्छा शक्ति है या उनकी जो विलिंगनेस उस समय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें।
1: जी सर, उसमें परिवार का एकजुट होके रहना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर जब व्यक्ति ने अब पहले ही शपथ ले रखी हो। तो इसमें मुझे लगता है परिवार का कर्तव्य है कि
0: कि
1: मृतक इंसान की जो
0: इच्छा
1: इच्छा थी
0: पूर्ति।
1: वो
0: हाँ
1: पूरी होनी चाहिए।
0: जी जी
1: जी
0: जी
1: दूसरा, नेत्रदान से क्या क्या, पहले तो ये नेत्रदान कौन कर सकते हैं, क्या इसके अंदर वो हैं इंट्रिकेसीज हैं, क्या बीमारी में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मृत्यु
0: जी
1: कैसे हुई थी, उसमें इसका क्या रोल रहेगा।
0: जी
1: नेत्रदान कोई भी व्यक्ति पैदा होने से लेके मृत्यु, चाहे 70, 80, 90, 100 साल का भी हो, कर सकता है। भारत सरकार ने इसको फुली अलाउ कर रखा है। जो पुतली हम लोग आँखों से निकालते हैं, वो दूसरे इंसान जिसकी दोनों पुतलियाँ ख़राब हैं, वो उसमें एक आँख में पुतली डालते हैं, वो जो एज ग्रुप है जिसका हम नेत्रदान एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, वो करीबन 4 साल से लेके 80 साल से पहले पहले तक का है। अगर इसके ऊपर और उसके नीचे के मरीज होते हैं तो उनकी पुतली पे फिर शोध के लिए वो पुतलियाँ इस्तेमाल होती हैं
0: जी
1: आगे
0: जी
1: के रिसर्च के लिए। अब वो नेत्रदान करने से फ़ायदा क्या है, इसके बारे में पहले हम इस बात पे चर्चा कर लें कि जो पुतली की बीमारियाँ होती हैं वो मोतियाबिंद और चश्मे के बाद दूसरे नंबर पे हैं हिंदुस्तान में। करीबन 8 से 10% लोग सिर्फ अंधता के शिकार इसलिए हैं क्योंकि उनकी पुतली में कभी चोट लग गई या कभी कोई बीमारी की वजह से पुतली सफ़ेद पड़ गई तो उनको दिखना बंद हो गया, या फिर पैदाइशी उनकी पुतली ख़राब थी और वो कभी रोशनी डेवलप ही नहीं कर पाए। पुतली एक आगे का प्रादर्शी भाग होता है जिसका जो मोटाई होती है वो करीबन 500 माइक्रोन होती है, 500 से 700 माइक्रोन, और ये करीबन 10 से 11 mm के डायमेंशन की होती है। दोनों साइड में सर्कुलर होती है। एक पुतली से अगर कोई इंसान अपने नेत्र दान करता है तो उस दान की वजह से जो

0: रोशनी लोगों में आ सकती है वो करीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग चार हैं, मतलब चार लोगों को आप रोशनी दे सकते हो। अगर मान लीजिए चार लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों आंखों की पुतलियां खराब हैं, तो अगर एक एक आंख को हम जोड़ा जाए तो एक इंसान के अंदर आधी पुतली से कार्य हो जाता है, बीमारी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो
1: जी
0: मैक्सिमम चार लोग रोशनी पा सकते हैं और मिनिमम करीबन दो लोग।
1: जी
0: अब पुतली के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें पुतली की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। चोट लग
1: चोट लग
0: गई,
1: जाती है
0: चोट
1: काम
0: लग गई,
1: करते हुए।
0: पस
1: जी
0: पड़ गया, खेती में काम कर रहे थे तो कोई
1: इन्फेक्शन हो
0: इन्फेक्शन
1: गया।
0: हो गया, भैंस से दूध निकाल रहे थे तो पूंछ लग गई आंख में, ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं जो हम लोग डे टू डे मरीजों को मेडिकल में अपने हॉस्पिटल
1: कुछ
0: में
1: नहीं है
0: देखते
1: तो
0: हैं।
1: जैसे कर रहे हैं, मिट्टी चली गई
0: जी,
1: उसको मल लिया,
0: मल लिया तो
1: मिट्टी में
0: इन्फेक्शन हो गया।
1: इन्फेक्शन है
0: जी,
1: तो।
0: तो ऐसी स्थिति में जब पस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो आधी पुतली से ज़्यादा कवर कर जाता है तो हमें वो पुतली को चेंज करना होता है, अदरवाइज आगे जाके उसके भविष्य में, उस बीमारी के भविष्य में हमें आँख की सफाई तक की नौबत आ जाती है। अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल पर एक जगह पे अगर हम उस पुतली को निकाल के सही प्रादर्शी पुतली जिसने किसी ने दान किया हो लगा दें तो उस इंसान की एक तो आंख बच ही जाती है, दूसरा उसको दिखना भी शुरू हो जाता है करीबन 1.5 से 2 महीने बाद। तो नेत्रदान इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, अगर कोई इंसान किसी को चोट लग गई है मान लीजिए, तो और उसकी पुतली में पस बना और आगे जाके वो पस बनने की वजह से आंखों में सफेदी आ गई, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में लोग फुली आना बोलते
1: फुलिया
0: हैं।
1: जी।
0: जी, तो उस स्थिति में भी इंसान को दिखता नहीं है और वो इस इंसान को दिख नहीं रहा, और कोई उस इंसान की आंख में अगर प्रादर्शी पुतली दोबारा से डाल दे तो उसकी जो डे टू डे जिंदगी है, जो अभी जिंदगी चल रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। पुतली के दान की वजह से वो अपना चलना फिरना पूरा कर पाता है, दूसरों पे डिपेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है कि कोई एक बंदा उसको पकड़ के खाना खिला रहा है या शौचालय ले जा रहा है, तो वो सारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। इसलिए नेत्रदान को महादान बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आप वो उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर रहा, उसके पूरे घर पे जो उसकी परेशानियां हैं कि एक आदमी का रोजगार रुका हुआ है, वो एक आदमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको चलाए फिराए खाना खिलाए, वो डिपेंडेंसी चली जाती है
1: तो पूरा घर की जो गतिविधियां हैं वो
0: वो।
1: ब्लॉक हो जाती हैं,
0: जी
1: और एक तरह से समाज में जो गतिशीलता है उसको हम रोके हुए हैं उस वो छोटी सी पुतली दान से, वो
0: बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: फर्क पड़
1: बड़ा
0: जाएगा।
1: पूरे परिवार की खुशियां लौट आती हैं
0: जी
1: उसमें।
0: जी
1: तो अब इसमें जिस व्यक्ति ने प्लेस करनी है, मान लो किसी भी उम्र में हो, तो कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे वो बहुत सारे आप जैसे कहा कि एनजीओ काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं, जिला अस्पताल है या बहुत सारे आई के भी
0: जी
1: हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाए और स्वेच्छा से कहे कि मुझे दान करना है, वहाँ जाके ये प्लेज
0: हॉस्पिटल,
1: भर दे
0: जी
1: ऐसे।
0: सर, हॉस्पिटल के कार्ड होते हैं जिसमें प्लेज कार्ड बोलते हैं, उसमें हॉस्पिटल का नंबर होता है। ये बहुत सारी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, ये आई बैंक बोलते हैं या नेत्र के बैंक होते हैं, जो जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसको निकाल के उसके ऊपर जांच करते हैं कि वो पुतली फिट होती है तो हम दूसरे इंसान में डालते हैं। तो सर
1: जी
0: वो हमारे अस्पताल में भी है और हमारी तरह ही कई सारे एनजीओज हैं जिसपे आप जाके स्वेच्छा से प्लेज कर सकते हैं।
1: लेकिन जैसे अब मैंने प्लेज की, मैंने भी कर रखा है इसको, लेकिन मैं फिर इसको अपने परिवार वालों को बताऊं कि
0: जी
1: मैंने इस
0: सर,
1: तरह का संकल्प लिया है,
0: जी सर,
1: ये मेरी अंतिम इच्छा होगी
0: जी
1: कि जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ूं, चाहे समय से छोड़ूं या असमय छोड़ूं, किसी कारण से छोड़ूं, तो इसमें उस समय फिर परिवार वाला व्यक्ति
0: बहुत
1: की
0: ज़्यादा
1: अगर
0: महत्वपूर्ण
1: जानकारी है
0: है।
1: तो उनका एक तरह से एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इसमें।
0: हाँ जी सर,
1: तो वो क्या करें, वो उस हॉस्पिटल को जब
0: वो
1: रिंग करेंगे।
0: हॉस्पिटल को 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर उनको कॉल करनी है। अगर आई बैंक तक पुतली पहुंचने में 4 से 6 घंटे से ऊपर का टाइम लगता है तो पुतली में उतनी जान नहीं रह जाती। जब इंसान की मृत्यु होती है तो 6 से 8 घंटे का टाइम माना जाता है जिसमें पुतली जिंदा रहती है सर। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लेट करते हो तो जो एक्चुअली प्रादर्शी पुतली है वो सफ़ेद पड़नी शुरू हो जाती है, फिर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर उस पर हम शोध कर सकते हैं, उससे किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते, किसी
1: फायदा
0: मरीज
1: है
0: को
1: वो
0: फ़ायदा
1: जो
0: नहीं दे सकते।
1: रोशनी देने वाली बात
0: जी
1: है वो नहीं
0: जी
1: होती। अच्छा, इसमें जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं उस समय, असमय होता है, अचानक होता है, व्यक्ति सबसे पहले इमरजेंसी में जिस भी हॉस्पिटल में जाता है वहाँ है, तो वहाँ जो इस तरह के इमरजेंसी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इस तरह की सुविधाएं रहती है, व्यक्ति जाए कहे कि भाई ये मेरे परिवार का व्यक्ति है, इसने

0: से किया हुआ है कि बाकी सारी गतिविधियां, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि हर आदमी परेशान भी होता है, हैरान भी होता है, और उसकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है।
1: जी
0: अब उस समय उसके संकल्प को पूरा करना होता है, तो बताने मात्र से ये चीज़ें फिर वो लोग हॉस्पिटल वाले कॉपरेट करते हैं उसमें।
1: बहुत कोऑपरेट करते हैं सर। हमारे हॉस्पिटल से भी कई कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो इस तरह की जगह पे
0: वो फिर
1: मौज
0: जैसे आपका जैसे आई हॉस्पिटल है फुल
1: जी
0: फ्लेश आई के लिए, तो
1: जी
0: वहाँ वो खबर करेंगे कि भाई यहाँ सुविधा नहीं है तो आप आइए
1: वो
0: करिए।
1: खबर आपको आना और जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर टाइम या तो मॉर्चरी में रहते हैं या इमरजेंसी में रहते हैं, और इस तरह के लोगों को ध्यान रखते हैं जिनको पहले से स्वेच्छा से जिन्होंने ये बोल रखा हो कि उनको नेत्रदान करना है, या फिर उनको काउंसिल करते हैं कि सर जैसे
0: आप देना
1: अकस्मात
0: चाहें।
1: डेथ हो चुकी है, अकस्मात मृत्यु हो गई है, और वो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इससे किसी को फ़ायदा होगा। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग इसको एक्टिव काउंसलिंग द्वारा नेत्रदान को प्रमोट करना बोलते हैं। इसको SCRP भी बोला जाता है, हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, यहाँ पे सारी चीज़ों का सुविधा रहती है, जिसमें NGOs और आई बैंक के जो लोग होते हैं वो पहले से ही मौजूद होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम मानसिक संतुलन इतना नॉर्मल नहीं रहता जितना घर पे रहता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे वो काउंसलर्स काम करते
0: काम
1: हैं।
0: करते हैं वो,
1: जी
0: आपको धीरज भी बताएंगे और वो जो जो काम है एक्चुअल वो भी
1: वो भी
0: करेंगे।
1: समझाएंगे जी।
0: आपने दो तीन चीज़ों का शुरुआत में इस्तेमाल किया था कि एक तो मिथ कि आज हम अगर आंख दान कर देंगे तो अगले उसमें पता नहीं क्या होगा, तो एक इस पे, और दूसरा ऐसी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जहां अगर कोई व्यक्ति उनसे ग्रसित है तो वो दान नहीं कर सकता, ऐसा है क्या कुछ?
1: हाँ सर, तो इस तरह की स्थिति में जब भी हम किसी से नेत्रदान लेते हैं तो करीबन 5 ml का ब्लड सैंपल भी जाता है संग के संग,
0: जी
1: ताकि ये देखने के लिए कि ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी अगर मरीज के अंदर है, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर हम वो दूसरे इंसान के आँख में पुतली को प्रत्यारोपण
0: ना
1: ना करें। उसका रीज़न ये है कि चांसेस बहुत रेयर है कि मतलब कोई बीमारी एक से दूसरे में जाए, लेकिन है। तो अगर हमारे पास थोड़ा भी ये रहता है कि इसमें रिस्क है, कि इस
0: हाँ, तो
1: पुतली का प्रत्यारोपण से रिस्क है, तो हम नहीं करेंगे,
0: फिर वो रिसर्च के काम
1: वो फिर
0: आएगी।
1: रिसर्च के काम आएगी सर। दूसरा, पुतली एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसका कहना गया है इसमें कोई खून की एक बूंद भी नहीं रहती। पुतली एक भगवान ने एक ऐसा हिस्सा बनाया है जो कि एकदम मार्वल है, आप ऐसे बोलिए। वो एक ऐसा शीशा है जो लगातार काम करता रहता है, उसके अंदर एक सेल्स हैं जो उसको एकदम प्रादर्शी रखने में बहुत काम करते हैं सर। तो अगर उसमें थोड़ा भी ऊंच नीच होती है, अगर कोई टेक्नीशियन ऐसा है जिसने उसको सही से हैंडल नहीं किया, तो पुतली ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सपर्ट हैंडलिंग ऑफ टिश्यू बोलते हैं, कि मतलब कोई एक एक्सपर्ट बंदा ही टिश्यू को रिट्रीव
0: उस
1: करे,
0: काम
1: तो
0: को कर
1: उस काम को करे जी।
0: सकता
1: 99% ये डॉक्टर्स करते हैं, और 1% कुछ NGOs ने अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रखा है ताकि
0: वो भी कर
1: वो
0: सकते हैं।
1: प्रतिरोपण करने वाली
0: मथुरा
1: पुतली को
0: जैसे
1: निकाल
0: शहर
1: सके।
0: में ये सुविधा है, आप ये कह
1: बिल्कुल
0: सकते
1: सर,
0: हैं।
1: कल्याणम करोती में अभी हमने ये सुविधा स्टार्ट करने के लिए बात करी है, और आने वाले दिनों में भगवान की कृपा रही तो वहाँ पे भी पुतली का प्रत्यारोपण शुरू हो जाएगा।
0: बाकी जैसे जिला अस्पताल है, आई
1: जी सर
0: शॉफ है,
1: जी,
0: और जो बड़े आई के वो है, तो
1: जिला
0: वहाँ
1: अस्पताल में सर यहाँ पे तो अभी पुतली का प्रत्यारोपण नहीं हो रहा, श्रॉफ आई में होता है अगर इमरजेंसी होती है तो।
0: तो
1: हाँ वहाँ पे होता है, वहाँ पे उनका जो पुतली का सर्जन है वो हफ्ते में एक बार आते हैं, देखते हैं कोई इमरजेंसी है तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं।
0: काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता भी है, और अगर हम डाटा पे जाएं तो मुझे लगता है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी रोशनी
1: जी
0: के इंतजार में हैं,
1: जी
0: लेकिन लाखों लोग जा भी रहे हैं। एक समाज में कितने आपको लगता है कि अभी बहुत जागरूकता की जरूरत है? बहुत आसान काम है, लेकिन हम शायद छोटी सी इच्छा अगर हम कर लें तो बहुत सारे लोग जो इंतजार में खड़े हैं दुनिया रोशन हो जाए उनकी, किया जा सकता है इसको?
1: बिल्कुल सर, किया जा सकता है इसमें सर। जागरूकता से अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है कि अगर हम पुतली से इंसान के आंख निकाल दी जाए तो कुरूपता आएगी पहली बात। तो मैं फिर से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें आंख नहीं निकाली
0: पूरी
1: जाती,
0: आंख नहीं निकालते
1: नहीं।
0: हैं, बस वो सफेद।
1: वो काला वाला भाग जो आप बाहर से देखते हो, वो
0: हाँ
1: काला वाला भाग एक्चुअली प्रादर्शी भाग है, जिसको हम पुतली भी बोलते हैं, आंखों का हीरा भी बोलते हैं, और आंखों का शीशा भी बोलते हैं। वो वाला भाग निकाला जाता है, तो उससे कोई कुरूपता नहीं आती। दूसरा, इसमें ये बोला जाता है कि अगले जन्म में मनुष्य अंधा पैदा होता है। मेरे नॉलेज में किसी भी

0: में पुण्य का काम कभी खराब नहीं हो
1: खराब
0: सकता,
1: नहीं,
0: और
1: सही बात।
0: इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ है नहीं कि
1: हाँ
0: आपके शरीर के अंग के द्वारा, जो कि आपकी मृत्यु के बाद भी काम कर रहा है और उससे किसी को फायदा हो रहा है, उससे आपको मरने के बाद भी पुण्य ही मिलेगा।
1: और मुझे लगता है सभी धर्मों में इस तरह की कथाएं हैं, ऐसे प्रमाण आते हैं कि जहां लोगों ने अंगदान किए समाज के
0: जी
1: और जन कल्याण के लिए, लोगों ने अपने अंगों के दान किए तो उस
0: जी
1: समय किए, तो आज तो मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है
0: तो
1: इस बात
0: ये
1: की है।
0: सबको, हाँ सर, तो इसमें विचारों को थोड़ा खुला रखना बहुत ज़रूरी है,
1: हाँ
0: और ये अंधविश्वास रखना कि नहीं पुतली के दान से ऊपर जाके चीज़ें खराब होंगी, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी मृत्यु के बाद भी, और आपके परिवार को भगवान करे उस आपने जो दान किया

0: और जन कल्याण के लिए लोगों ने अपने अंगों के दान किए, तो उस समय किए तो आज तो मुझे लगता हूँ बहुत आवश्यकता है
1: तो
0: इस बात
1: ये
0: की है।
1: सबको, हाँ सर, तो इसमें विचारों को थोड़ा खुला रखना बहुत ज़रूरी है, और ये अंधविश्वास रखना कि नहीं पुतली के दान से ऊपर जाके चीज़ें खराब होंगी, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी मृत्यु के बाद भी, और आपके परिवार को भगवान करे उस आपने जो दान किया उससे उनको भी फायदा पहुंचेगा।
0: जी, अब इसमें जैसे समाज के जो जागरूक लोग हैं, आप जैसे हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, आप कहते रहते हैं, सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, सुविधाएं भी दे रही है, और भारत सरकार ने इसको आपने जैसा कहा कि परमिट कर रखा है कि आप नेत्रदान कर सकते हैं, उसमें अभी कहाँ लैक है, मतलब चीजें हैं, कर सकते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है अभी ये थोड़े से अंधविश्वास तो है लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है जो मोटिवेट कर सकता है लोगों को, आगे आ सकता है, वो भी अभी इतनी विल नहीं दिखा रहा है
1: उसका
0: इसमें?
1: सर एक जो मेजर कारण है, जो बड़ा कारण है, वो ये है कि लोग जागरूकता तो है ही है, जागरूकता तो हम लगातार कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब थी, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, लोगों ने दान करना ज़्यादा चालू कर दिया है, जिससे जो मरीज जिनको पुतली की बीमारी उनको फायदा होने लगा है। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि किसी ने प्लेज किया, मान लीजिए किसी ने शपथ ली, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसके परिवार वाले हैं वो उस एक्स्ट्रा बर्डन की तरह देखते
0: हाँ,
1: हैं
0: उनको
1: कि
0: लगता है अब ये
1: अब ये काम क्यों
0: हाँ कि
1: करेंगे।
0: काम जैसा लगता है उनको ये, जबकि
1: हाँ,
0: ये काम नहीं है,
1: ये
0: ये
1: एक
0: एक
1: बहुत बड़ा
0: बड़ा
1: पुण्य पुण्य की
0: हाँ।
1: चीज है, जिसको मुझे लगता है कि मृत इंसान की श्रद्धांजलि में वो करना चाहिए। जितना इस बात को बोला जाए, जितना इस बात को लोगों तक
0: बार
1: पहुंचाया
0: बार
1: जाए,
0: कहा जाए।
1: बार बार सुनाया जाए, उतना बेहतर है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको लगे कभी कि ये खास कोई फायदे का काम नहीं है, हमारे अस्पताल आइए, यहाँ पे हजारों मरीज ऐसे होते हैं जो पुतली की
0: इंतजार
1: वजह
0: कर
1: से
0: रहे
1: चल
0: हैं।
1: नहीं पा रहे, गेट से अंदर तक नहीं पहुँच पा रहे। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका पुतली का प्रत्यारोपण हो गया, वो रोते हुए अंदर आते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया 7 साल बाद, 10 साल बाद देखी कि अब अच्छा डॉक्टर साहब, अब
0: अब
1: हमें दिखना शुरू हुआ है, अब हम चल फिर पाते हैं, मैंने तो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। तो वो दृश्य देख के समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा
0: किसी
1: ज़रूरी
0: जिसने
1: है,
0: वो पुतली दी उसने कितना बड़ा
1: बड़ा पुण्य
0: काम
1: का
0: के
1: काम किया
0: काम
1: है।
0: किया,
1: जी
0: ये उस व्यक्ति की भावना और उसके भाव देख के पता लगता है
1: जी
0: जिसको वो पुतली लगाई गई
1: जी
0: हो
1: जी
0: इसमें। तो क्या चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जो हम आपकी बात को सुन रहे हैं कि भाई इसमें सिर्फ इसको काम न समझें, इसको एक दो दिन की या एक दो फोन की ऐसा ना समझे कि कहाँ से झंझट आ गया।
1: जी
0: अगर ऐसा मौका मिल रहा है आपको, सूचना दे सकते हैं, खबर पहुंचा सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को जागरूक कर सकते हैं, या आपके परिवार के आसपास लोग कहीं समझा सकते हैं, तो इसमें सबका योगदान सहयोग होना चाहिए।
1: हाँ सर, इसमें सभी का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान ना करे कभी किसी को पुतली के प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़े, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर किसी ने शपथ ली हुई है और आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते, तो भगवान ना करे ऐसा ना हो कि आगे जाके भविष्य में इवन आपको ही ज़रूरत पड़ जाए, आपके परिवार वालों को किसी को ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह की स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आप मृत इंसान की इच्छा अगर आप पूरी करते हैं, तो भगवान भी आपको उस बीमारी से बचाएगा।
0: बचाएगा
1: जी, और
0: उसमें।
1: सर दान इतना बड़ा है, मैं फिर से इस बात पे जोर दूंगा, एक बार आप आई हॉस्पिटल आके देखिए, जो दृश्य आपको दिखेगा ना, जो मरीज गेट से अंदर तक भी नहीं आ पाता है और फिर जब उसका पुतली चेंज होके अंदर आता है, वो कैसा बच्चों की तरह बात करता है, वो अलग ही दृश्य होता है। और
0: हाँ,
1: दूसरा, आप इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समाज पे देखिए कि अगर कोई इंसान किसी पे डिपेंडेंट है और उस पर हम पुतली का प्रत्यारोपण करते हैं और उसको दिखना शुरू हो गया, वो एक इंसान को फ्री करता है जो उसकी सेवा में लगा हुआ है, वो खुद भी अपना काम खुद से करेगा, और हो सकता है अच्छा अगर पुतली का प्रत्यारोपण हुआ हुआ है तो वो खुद भी कमा खा सकता है और समाज को ऊपर उठा सकता है।
0: चलते चलते ऐसे लोग जिनका किसी डैमेज हो गया, चोट लग गई, आपने कहा जैसे गांव में ऐसे दृश्य बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ उस समय ही उसकी नज़र नहीं थी, तो उसमें भी क्या प्रत्यारोपण हो सकता है?
1: हाँ सर, ऐसी स्थिति है जिसमें कंजेनाइटल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, पैदाइशी जन्मजात पुतली सफ़ेद होना भी बोलते हैं। इस तरह की स्थिति में जितना जल्दी हम पुतली का प्रत्यारोपण कर दें उतना बेहतर है, और जन्मजात शिशुओं में भी पुतली का प्रत्यारोपण किया जाता है। आप ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए कि अरे बच्चा

0: और नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर बीमारी का समाधान है, अगर पीछे का भाग आंखों का पूरा सही है और आप उतली का प्रतिरोपण ढंग से कर दें, तो बच्चे की जिंदगी आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी।
1: ऐसे ही एक तरह से कि कैमरा बिल्कुल ठीक है
0: जी,
1: लेकिन
0: शीशा
1: उसका
0: खराब हो गया
1: उसका
0: उसका,
1: लेंस
0: तो आपने
1: खराब है।
0: लेंस आपने जैसे ही चेंज किया फिर वो कैमरा फिर से शुरू हो जाएगा।
1: तो श्रोता बंधु बात कर रहे थे नेत्रदान की, बहुत अच्छा काम है, समाज के हित का काम है, व्यक्ति के हित का काम है। और एक ऐसा वो कि भाई कोई व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जा रहा है किसी भी कारण से, अगर हम उसकी दो आंखें अगर दो पुतलियां दान कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एक व्यक्ति से दो तो कम से कम हो ही सकते हैं, चार की भी आंखें या
0: सही हो
1: रोशनी
0: सकते हैं जी।
1: हम लौटा सकते हैं। तो इसमें हम सब लोग आए, आगे आए, समझें चीज़ों को, पहले खुद समझें फिर लोगों में ये अवेयरनेस लाएं, और एक बेहतर दुनिया और एक जागरूक दुनिया और एक रोशन दुनिया बनाने में हमारा जो योगदान हो सकता है उसमें अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ये विशेष भेंटवार्ता नेत्रदान जानकारी एवं सुझाव। इस विषय पर डॉक्टर मोहम्मद सुफियान दानिश से बातचीत की ओपी सिंह ने।
1: आपकी चाय।
2: ईएमआई किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
1: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
4: ये आकाशवाणी है।
5: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
6: महात्मा गांधी का कहना है,
7: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
8: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप।

0: कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम
3: पर दादी हाँ आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नाम ही नहीं बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
2: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए

0: साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं, एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हम

0: को करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो, तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं।

स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जबकि

इसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता, इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी

कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 300

0: सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं

0: से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: आपकी चाय।
4: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
3: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
4: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
5: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति है संजय सरस्वत की।
7: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो नमस्ते सर।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
0: हम विपिन कुमार बोलेगा छोली से।
1: विपिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है बहुत बहुत।
0: और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है?
1: सब लोग अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया है, रक्षाबंधन को मना रहे हैं बढ़िया विपिन से।
1: अच्छी तरह से मनाएं आप, बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं आपको रक्षाबंधन पर्व की।
0: आपको भी शुभकामनाएं
1: जी। आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
0: आज आंटी लंबर फिल्म का गाना सुना दीजिए। कुछ कुछ
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: योगेश जांगड़े बे में तेरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: बहुत स्वागत है योगेश जी कार्यक्रम में।
1: जी शुक्रिया।
0: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है भैया, राखी का त्योहार मना रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रक्षाबंधन पर्व की।
1: आप सबको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसे हैं योगेश भाई?
1: बढ़िया है भैया, और त्योहार ही मना रहे हैं, और इस व्यस्त समय में भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते।
0: ये तो आपका बड़प्पन है, हमें याद रखते हैं आप हमेशा
1: जी,
0: जी। आज बताइए क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में।
1: ये एक प्यारा गीत है, मेरे भैया मेरे चंदा, ये गाना सुनवा देंगे।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: हम सचिन कुमार बोल रहे हैं आगरा से। सर,
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हैप्पी रक्षाबंधन।
0: हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी।
1: और बताइए, आप बढ़िया हैं कि नहीं सर? सर,
0: बहुत अच्छे हैं आप।
1: हम भी
0: ठीक
1: बढ़िया
0: हैं?
1: हैं। हाँ जी सर, हम भी बढ़िया हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज कार्यक्रम में क्या पसंद रहेगी आपकी, बताइए।
1: सर, हमें अकिमताई फिल्म का सुनना है, आज बचना है मुश्किल तेरा।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। सचिन
1: थैंक यू
0: जी,
1: सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर।

0: सूरज सुहाना है और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, पूरी तैयारियां चल रही हैं।
1: जी जी बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं।
0: और शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हो रही है, और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 50 लाख श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में आएंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, ये ब्रजभूमि का तो महापर्व है।
0: जी जी बिल्कुल, ये तो ब्रजभूमि और ब्रजरज की महिमा है, और जहाँ ब्रजरज है वहाँ कृष्ण मुरारी हैं।
1: जी बिल्कुल, आज क्या फरमाइश रहेगी सर कार्यक्रम में?
0: मनोहर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आनंद
1: जी,
0: मन्ना डे साहब ने गीत को गाया है, जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए।
1: प्रजापति जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: परमाणी सर साहब, सादर सा प्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका परिचय जानना चाहते हैं सर।
1: मानवर मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आपको, आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आने वाली जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी सर दोनों पर्वों की बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
1: जी हृदय धन्यवाद। मानवर आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं सर, आपका हाल चाल जानना चाहते हैं।
1: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आपका आशीर्वाद है, बाकी बिहारी कृपा है और मथुरा वृंदावन में इस वक्त मौसम भी बहुत ही खुश।

0: कभी तो हंसाए।
1: हेलो
2: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, मैं मिनेसोटा में गांव कुमार से भजन लाल बोल रहा था सर।
1: आपका स्वागत है भजन लाल जी कार्यक्रम में।
2: और सर आप ठीक हैं?
1: आशीर्वाद है आप
2: और
1: लोगों का।
2: आकाशवाणी सब टीम बढ़िया है सर, ठीक है सब।
1: बढ़िया है सर।
2: शुभकामनाएं सर
1: जी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से
2: पूरे स्टाफ के लिए सर, मिनेसोटा में सबके लिए सर।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये गाना रक्षाबंधन का ही सुनना है आपको सर।
1: कौन सा वाला गाना सुनना चाहेंगे?
2: जैसे बचड़ी और गगन।

0: जैसे चंदन और चमन का ये बंधन राखी बंधन है ऐसा।
1: सुनवाते हैं भजन लाल जी आपकी पसंद का ये गाना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: प्रणाम सर।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी संजय सरस्वत की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं चंद फिल्मी कव्वालियां।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शमशाद बेगम को फिल्म मुगले आजम की इस कव्वाली में। बोल थे शकील बदायूनी की और धुन थी नौशाद की। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अगली कव्वाली।

चौदहवीं का चांद इस फिल्म की ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में। लिखा था शकील बदायूं ने और धुन बनाई थी रवि ने। अगली कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं दिल ही तो है फिल्म से, गाया है आशा भोसले और साथियों ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और संगीत है रोशन का।

मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बरसात की रात फिल्म की यह कव्वाली, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रोशन ने। इस कव्वाली के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं आशु रावत, संगत कलाकार हैं बांसुरी पर श्री लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर श्री चंद्रेश गोयल, ढोलक पर श्री अजय शर्मा और परकशन श्री राहुल पराशर का है। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार थी आशुरावत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के

0: क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1:10 पर सुनेगा इस मास का गीत। गीत होगा मुरली मनोहर मंजुल का और संगति होगी नरेश मल्होत्रा की। 1:15 पर सुनेगा झलकी प्रेरणा, लेखक होंगी धर्मवती और प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। 1:30 पर श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, प्रस्तुति होगी ओपी सिंह और संजय सरस्वत की।

एक बजकर 45 मिनट पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। अंग्रेजी समाचारों का समय होगा 2 बजे का। 2:15 पर सुनिएगा हिंदी समाचार और 2:30 पर सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। 3 बजे हमारी प्रथम सभा का समापन होगा और दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आज की बात में विषय हैं भगवती चरण वर्मा जयंती और जबरन गुमशुदा लोगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

शाम 6:10 पर देशगान सुनिएगा और 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज काव्य मकरंद, कलाकार राकेश कुमार शास्त्री।

फिल्मी और गैर फिल्मी भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम संध्या वंदन सुनेगा शाम 6:30 पर। 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। चर्चा होगी अधिक बारिश में फसलों को जल भराव से कैसे बचाएं इस विषय पर, और कृषि में AI एवं डिजिटल तकनीक का उपयोग इस विषय पर। साथ ही सुनेगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मन भाव।

Bueno. शाम 7:30 मिनट पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम थाईलैंड के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। इसके बाद के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे न्यूज ऑन AIR ऐप पर, जैसे शाम 7:31 पर शाम सुहानी कार्यक्रम, रात 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा, 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम, सुहाने तराने रात 9:15 पर, अनुगूंज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर, रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आयोजित होगी।

ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। दोपहर के 1:10 हुए हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस मास का गीत। गीत है मुरली मनोहर मंजुल का, संगति है नरेश मल्होत्रा की।

अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत पिया सावन की। स्वर था डॉक्टर अंशवना सक्सेना का और गीत मुरली मनोहर मंजुल का था। संगत थी नरेश मल्होत्रा की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं झलकी प्रेरणा। लेखक हैं धर्मवती, प्रस्तुति है आर के त्रिपाठी की।

0: ही बैठते हो, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। आज तुम्हें घर के कई काम करने हैं।
1: तू मुझे छुट्टी वाले दिन भी नहीं लिखने देती, कुछ ना कुछ बड़बड़ करती रहती है। अब चुप हो जा, अब मेरा मूड कविता लिखने में है।
0: मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं काम की कहूंगी, मैं बोलूंगी और खूब बोलूंगी। मुझ पर गुस्सा क्यों उतारते हो, लगे मुझे डराने धमकाने।
1: देख अंजलि, खामोश हो जा। अरे दुनिया वाले सुनेंगे तो भला क्या कहेंगे। और तू कोई कम हैसियत वाले घर की नहीं, एक कवि की, कवियों की सिरमौर की।
0: मैं सब समझती हूँ, मैं कोई घास खोदने वाली नारी नहीं हूँ, मेरा नाम अंजलि है, अंजलि।
1: हे भगवान, तुम्हें मेरा जोड़ा इसके साथ नहीं बनाना था। यह शांति रखने वाली नहीं, बड़बड़ करती रहती है। मुझे तो सुशील, मृदुभाषिणी और शांत प्रिय।
0: हे ईश्वर, तुमने मेरा जोड़ा इनके साथ क्यों बना दिया? ये हर समय काम ही काम करते रहते हैं। मेरे बच्चों से वो मुझसे कभी हंसकर ही नहीं बोलते।
1: देख अंजलि, तू ऐसी बातें मत किया कर। हंसकर बोलने का एक निश्चित समय होता है। मुझे अब दरवाजे के चबूतरे पर बैठकर कविताएं लिखने दे।
0: मैं तो तुमको हर समय लिखते ही देखती हूँ, तुम भावों में खोए रहते हो, न जाने क्या लिखते हो। मैं तुमसे पूछती हूँ कि बच्चों से प्रेम से हंसकर बोलने का क्या कोई मुहूर्त निकलता है?
1: नहीं, कोई मुहूर्त नहीं निकलता। घर के बाहर के सभी कामों से निवृत्त होने पर ही संभव होता है प्यार। उथल पुथल में दिल कितना बेचैन रहता है।
0: मैं सब जानती हूँ, तुम लिखते समय सामने वाली संगीता के दरवाजे की तरफ ही देखते रहते हो। लगता है तुम्हारा दिल कहीं दूसरी तरफ है।
1: नहीं अंजलि, तुमको गलतफहमी है। सामने वाले दरवाजे में मेरी कविता है, भावों की धारा है। और कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिखाई पड़ती है, जब तुम मधुर आवाज में कुछ गुनगुनाने लगती हो।
0: मेरे दिल को मीठी मीठी बातों से मत भरिए, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हारा दिल कहीं दूसरी तरफ है।
1: देख अंजलि, अब तू शांत हो जा और मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कई बार सुन चुका हूँ, तुम्हारा दिल कहीं दूसरी तरफ है, अब तू ही बता मेरा दिल कहाँ है।

0: चाहते हो मैं अपने मुख को सुई से सीलूं, कुछ ना बोलूं? मैं ऐसा नहीं करूंगी, खूब बोलूंगी, गड़बड़ होती है तो हो जाए। अब तुम ही बताओ सामने वाले दरवाजे में तुम्हें क्या लगाव है।
1: अच्छा तो अब तेरी जीभ भी ज्यादा कतरनी सी चल रही है, तू सिर पर चढ़ी आती है, तुझे अभी सिर से नीचे उतारना पड़ेगा।
0: कैसे? तुम मुझे सिर से नहीं उतार सकते, मेरी जीभ बंद नहीं कर सकते।
1: मैं अभी एक पल में तेरी जीभ को बंद कर दूंगा। मैं तुझ जैसी लड़ाकू और गलत फहमी वाली को कभी घर में नहीं रखूंगा। मैं तुझसे अंजलि नाक तक भर गया हूँ।
0: तुम मुझसे नाक तक परेशान हो तो मैं अभी मायके जाती हूँ, वहीं जीवन काट दूंगी, कभी इधर पैर करके भी नहीं सोऊंगी। जाती हूँ और बच्चों को भी ले जाऊंगी।
1: जा जा भगवान, अभी जा, तू मुझे सोने से लिपटी हुई भी नहीं चाहिए, और अपने बच्चों को भी ले जा साथ में, जा।
2: नमस्ते पापा।
3: क्या बात है बेटी, अचानक कैसे आना हुआ? ज्ञान सिंह नहीं आए तुम्हारे साथ?
2: नहीं, वे नहीं आए, मैं अकेली ही आई हूँ पापा। उन्होंने मुझे उल्टी सीधी बातें करके घर से निकाल दिया है।
3: क्यों? क्या बात हो गई?
2: मुझे कहा है कि तू मुझे सोने में लिपटी हुई भी नहीं चाहिए, अपने पीहर में रह, यहाँ से चली जा।
3: आखिर कोई बात तो होगी बेटी, बताओ ना, इतनी गहन से बातें करने का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा।
2: कुछ बात नहीं थी, एक छोटी सी बात थी। मैंने उनसे कहा था कि तुम हर समय लिखते ही रहते हो, घर के कामों की तुम्हें चिंता नहीं।
3: बेटी अंजलि, इतनी सी बात पर तुझे घर से नहीं निकाल सकते, कोई और गंभीर कारण हो सकता है।
2: नहीं पापा, यही बात थी, उन्होंने मेरा अपमान करके मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी।
3: बेटी एक बार मैं अपने समधी जी से जरूर मिलूंगा, सारी बातों से उनको अवगत कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वे ज्ञान सिंह को अवश्य समझाएंगे, क्यों कि उनकी आंखों में अभी भी हया बाकी है।
2: हाँ वे तो अच्छे हैं, सीधे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चलूं?
3: हाँ तो ये जरूर मेरे साथ चलना है, और अभी चलना है।
2: तो मैं तैयार हूँ।

0: दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए।
1: भाई साहब नमस्कार।
0: नमस्कार, आइए सतपाल जी, कहिए कुशल से तो है ना। और बेटी अंजलि तुम इधर आओ, इधर बैठो। और बच्चे सोनू वोनू तुम दोनों मेरे पास आकर बैठो।
1: हाँ कुशल है, परंतु अंजलि को तो ज्ञान सिंह जी ने घर से निकाल दिया है और कभी भी घर में घुसने न देने की धमकी भी दी है।
0: हाँ जी, मुझे सब कुछ मालूम है। उसका दिमाग हर वक्त लिखते लिखते ख़राब हो गया है ना, कुछ चिड़चिड़ापन सोहा में रहता है।
1: देखिए जी, मैं तो आज आपसे दो टूक फैसला करके ही जाऊंगा। यदि ज्ञान सिंह मेरी अंजलि को घुसने नहीं देंगे तो मैं खर्चे का दावा अदालत में करूंगा।
0: मैं समझ गया,
1: इसमें आप बुरा मत मानिएगा।
0: मैं समझ गया, तुम खर्चे का दावा अदालत में कर दोगे।
1: हाँ, मजबूर होकर यही कदम उठाना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं सतपाल जी, ऐसा मत करो, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। हमारी पुत्रवधू खर्चे के लिए अदालत में जाए, ये हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे घर में कमी किस बात की है?
1: तो फिर किया क्या जाए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग हो रहा है और दूसरे अंजलि के जीवन का भी सवाल है।
0: मैं अपने बेटे ज्ञान सिंह को समझाऊंगा और बेटी अंजलि और बच्चों को यहीं रखूंगा अपने पास ही।
2: बाबा, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है, मैं आपके पास ही रहूंगा और आपके पास ही पढ़ूंगा।
3: बाबा, मैं भी आपके साथ रहूंगा।
0: हाँ हाँ बेटा सोनू मोनू, तुम यहीं रहना, तुम तो बड़े सीधे हो, तुम मुझे बुढ़ापे में सहारा देते रहना।
3: हाँ बाबा, मैं तुम्हें बुढ़ापे में मदद दूंगा, तुम्हारा प्रत्येक काम किया करूंगा।
1: तो मैं वापस अब घर जा रहा हूँ।
0: अरे नहीं बेटा सोनू मोनू, अपनी मम्मी से चाय और नाश्ता बनवा कर तो ले आओ।
2: अभी लाया, देरी नहीं करूंगा।
1: नहीं, मैं बेटी वाला हूँ, चाय नाश्ता नहीं कर सकता।
0: अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा।
4: आज उदास क्यों हो, सुस्ती का क्या कारण है?
5: नहीं संगीता, कोई कारण नहीं है, मैं उदास कहाँ हूँ।
4: नहीं, तुम चिंता में डूबे हुए हो, चेहरा साफ साफ बतला रहा है।
5: नहीं नहीं, यूं ही तुम्हें भ्रम है, तुम्हारी नजर

0: नजरों में अंतर है।
1: मुझे तुम क्यों बताओगे, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, मैं तुम्हारी होती ही कौन हूँ?
0: क्यों संगीता, नाराज हो गई क्या? तुम भी अजीब हो, मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया नहीं है।
1: तुम्हें मेरी कसम है, बताओ ना।
0: तुम कसम देती हो तो बात यह है कि मेरी कविता लिखने से अंजलि नाराज होकर मायके चली गई है।
1: क्या, मायके चली गई? तो तुम कविता लिखना छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे सामने गुनगुनाना छोड़ दूंगी।
0: नहीं, तुम्हारी आवाज में ही तो मेरी कविता है। तुम्हारे गुनगुनाने से मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। तुम्हारी मधुर लय, पंचम स्वर, कोयल की सी कूक, कैसा अजीब संयोग है संगीता।
1: हाँ, प्रारब्ध का तो संयोग है ही, परंतु दुनिया वाले कुछ और ही कहते हैं।
0: दुनिया वाले क्या कहते हैं संगीता?
1: दुनिया वाले हम दोनों को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, परंतु वे लोग हकीकत को पहचानने की कोशिश नहीं करते।
0: हकीकत उन्हें देखनी चाहिए, कवि की कल्पना की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारे गीत, तुम्हारी प्रेरणा के बिना मेरी कविता अधूरी है। कुछ मधुर स्वर में गुनगुनाओ ना।
1: अभी लो। हमारो भारत देश महान, हमारो भारत देश महान, अखंडता हम रखें देश की, अखंडता हम रखें देश की, हो जाए बलिदान हमारो भारत देश महान।
0: वाह संगीता वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी महाकाव्य के अनुरूप ही कविता सुनाई है तुमने। वाह, तुम तो मेरे दिल की बात को भावों से समझने वाली हो। मैं भारत महान महाकाव्य लिख रहा हूँ।
1: ठीक है, लिखो, परंतु अंजलि को वापस बुला लो, मेरी ये इच्छा है।
0: नहीं, अंजलि अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। संगीता कभी नहीं आएगी।
1: लोग इसका दोष मेरे सिर पर मढ़ेंगे, मैं यह कदापि सहन न करूंगी। महाकाव्य कितना शेष है, उसकी कथावस्तु क्या है?
0: महान भारत महाकाव्य पूर्णता की ओर है। उस महाकाव्य में एक नायिका के चंद्र समान मुख, तोते जैसी नाक, मेघ समान घुंघराले बाल, कमलपंती जैसे दांत, मोर जैसी गर्दन को देखकर प्रत्येक कवि का हृदय उसके सौंदर्य की तरफ बरबस खिंच जाता है, मानो उसे किसी शिल्पकार ने ढाला हो।
1: मैं अब समझी, तुम यह तारीफ मेरी ही कर रहे हो और मैं ही तुम्हारे महाकाव्य की नायिका हूँ। मेरी इतनी तारीफ मत करो, और मैं यह चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा कविता रूपी प्यार कविता तक ही सीमित रहे।
0: बस संगीता बस, यही मैं भी चाहता हूँ। प्रणाम पिताजी।
2: खुश रहो बेटे।
0: पिताजी आप उदास हैं, लगता है कोई जटिल समस्या आपके सामने है, और आपने अपना हाल क्या बना रखा है?
2: तेरे काली कारनामों से मेरा शरीर चरचर हो गया है। तू मेरा सुपुत्र नहीं, कुपुत्र है, कुपुत्र।
0: पर कैसे पिताजी?
2: तुमने मेरी इज्जत को कलंकित किया है। क्या अंजलि व बच्चों का बुढ़ापे में मैं बंदोबस्त करूं?
0: अंजलि ने हकीकत को तहकीकात से नहीं पहचाना, उसने मेरी कविता को कविता नहीं समझा। पिताजी वह मुझको गलत आंखों से देखती है, उसकी धमकियों के आगे मैं झुकने वाला नहीं हूँ।
2: इस बदनामी से मैं पतली लकड़ी की भांति टूट चुका हूँ। मैं लकड़ी में घुन लगने के समान दिल के अंदर घुन रहा हूँ। तेरा और संगीता का जो चवैया समाज में चल रहा है, उससे मेरी गर्दन नीचे झुक गई है।
0: पिताजी आप घुन से घुनो मत, मेरी हकीकत को पहचानो। मेरा महान भारत महाकाव्य पूरा हो गया है, जो मैंने संगीता की मधुर स्वर लहरी से पूर्ण किया है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ पिताजी, मेरा संगीता से कोई संबंध नहीं है।
2: अब मैंने हकीकत को समझा। बेटी अंजलि तुम गलत हो, ज्ञान की हकीकत कुछ और है, उसे समझो और इनसे माफी मांगो।
3: मैं हकीकत को पहचान नहीं सकी, ये मेरा ही दोष है, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
4: पिताजी मम्मी को माफ़ कर दो।
5: पिताजी मम्मी को माफ़ कर दो ना।
2: बेटा अंजलि को

0: माफ कर दो।
1: पिताजी, मैं क्या माफ करूंगा, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है।
0: ज्ञान सिंह, भारत महान महाकाव्य तेरा और मेरा दुनिया भर में नाम रोशन कर देगा।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति है OP सिंह और संजय सारस्वत की।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो श्रोताओं हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमेशा की तरह ओपी सिंह साहब, सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार संजय भाई, और सभी श्रोताओं को नमस्कार जो फोन कॉल पे जुड़ेंगे, जो व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, जो हमारे पत्र लिखते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, और जो कार्यक्रम सुनेंगे उन श्रोताओं का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जब तक फोन कॉल आए, ब्रज की बात कर लेते हैं भैया। ब्रज इस समय कृष्णमय हो रहा है, राधा में हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी राखी का त्योहार हम सब बना के चुके हैं सर।
1: जी जी,
0: अब जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है। हाँ,
1: तो निश्चित तौर पे जो अजन्मा है उसकी जन्म का त्योहार जब भी आता है जन्माष्टमी ब्रज में
0: जी।
1: तो बाकी तो सारे देश विदेशों में हम मनाते हैं, लेकिन ब्रज की बात इसलिए अलग है कि ब्रज को उन्होंने अपना माना है और ब्रजवासियों ने उनको अपना लल्ला माना है।
0: बिल्कुल,
1: और आज भी वो भाव बना हुआ है,
0: लाला की तरह ही उनको लड़ाते हैं सर हम लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो तैयारियां शुरू हो गई हैं
0: जी।
1: प्रशासन अपने काम कर रहा है, अपने यहाँ के जो वासिंदे हैं वो ब्रजवासी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो आप देखेंगे पूरे मथुरा में, वृंदावन में, जगह जगह कोई भंडारे लगा रहा है।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: बहुत सारे अब तो एक जो प्रचलन शुरू हुआ है वो अच्छा है, इससे हमारी
0: आवभगत होती है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं हमारे ब्रज मंडल में,
1: जी जी,
0: उनकी आवभगत भी होती है, उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ साहब ब्रजवासी भी हमारा स्वागत पलक बिछा के कर रहे हैं।
1: और एक जो प्रचलन आपने देखा होगा संजय भाई
0: जी,
1: जन्माष्टमी के आसपास जो पूरे शहर में जगह जगह पर प्रशासन भी उसमें एक बहुत अच्छी पहल भी कर रहा है और उसको रोचक भी बना रहा है कि जो ब्रज मंडल से जुड़े बहुत सारे कलाकार है
0: जी जी,
1: उनको मंच प्रदान करके आसपास ऐसी चीजें बना करके यहाँ की
0: लोक विधाएं हैं,
1: लोक विधाएं, नृत्य है, संगीत है, भजन है, तो वो सारी चीजें जिकड़ी है, तो उनके माध्यम से जो बाहर से जो लोग आते हैं उसका आनंद लेते हैं कि कलाकारों को भी मौका मिलता है, तो एक ही उसमें बहुत सारी चीजें सद जाती हैं।
0: वो लोग जान भी पाते हैं कि हमारे यहाँ की कलाएं क्या हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म की जाती हैं।
1: जी जी, तो साहित्य, संगीत, धर्म और आध्यात्म सब मिलकर के जन्माष्टमी का जो आनंद आता है,
0: महापर्व कह सकते हैं इसको,
1: कहते हैं, तो उसका तो कुछ अलग ही वो है। और इसी देखो एक पत्र मेरे पास है, ये अक्सर अब लिख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप भी भेज देते हैं, प्रकाश राय जी हैं
0: जी जी,
1: और गोवर्धन से आप लिख रहे हैं कि निश्चित तौर पे आपके कार्यक्रम तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, काफी कुछ आप नया करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

0: बार बार इस बात को कहते हैं कि आप हमारा एक कार्यक्रम हुआ करता था ये रास्ते जिंदगी के
1: जी सर।
0: नए रूप में आप हालांकि आप स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं फोन से, लेकिन हमारे उस कार्यक्रम को भी शुरू करिए। तो ये सुझाव हम इनको हर बार यही कहते हैं कि थोड़ा सा धीरज रखिए, नए रूप स्वरूप पे ये कार्यक्रम जरूर
1: आपके सामने आएगा
0: आएगा
1: बिल्कुल।
0: और हम इनको आज भी यही कहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। दिन और समय थोड़ा सा तय होने में अभी देर लग रही है, लेकिन आएंगे जरूर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर से हम ब्रज विरासत, आप कहिए, बहुत सारी यहाँ की लोक कला है या बहुत सारी ब्रज भाषा है, ब्रज बोली है, ब्रज साहित्य है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: इतना सब कुछ क्योंकि ब्रज में
1: बड़ा ही समृद्ध है,
0: परंपरा रही है, और इतने राजे महाराजे आए वृंदावन में। तो आप देखिए कि राजस्थान और वृंदावन का, यूपी का कितना गहरा संबंध रहा होगा कि हर राजा महाराजा और घराने के नाम से, चाहे वो जयसिंह हीरा की बात करें,
1: हाँ जयसिंहपुरा मथुरा का,
0: हाँ
1: जयपुर मंदिर वृंदावन का,
0: हाँ,
1: सर
0: तो मीरा चल करके आई, चैतन्य प्रभु बंगाल से चल करके आए, साउथ से विट्ठल जी आए
1: जी,
0: तो परंपरा रही है। इसको हम एक नए रूप स्वरूप में आपके सामने लेकर के आएंगे। क्या नाम रहेगा और कब उसको प्रसारित करेंगे
1: ये समय से सूचित करेंगे अपने श्रोताओं को। सर एक फोन कॉल आ रही है,
0: जी जी ले लेते
1: लेते हैं,
0: स्वागत करते हैं।
1: हेलो
2: जी, राधे राधे सर।
1: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं सर, आपका परिचय दे दीजिए।
2: महोदय आपका चौधरी महेंद्र सिंह, ब्रज रेडियो सोता मित्र।
1: चौधरी साहब बहुत स्वागत करते हैं, आज सिंह साहब हैं हमारे साथ बातचीत के लिए।
0: बताइए महेंद्र सिंह जी, क्या कुछ आज लेकर के आए हमारे कार्यक्रमों के बारे में, कोई जो वक्तव्य आपका हो बताइए।
2: सर आज रक्षाबंधन है, सबसे पहले तो हमारा सभी श्रोताओं को, समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें।
0: जी जी बिल्कुल, आपका भी जो है हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि ब्रज ही नहीं पूरा भारतवर्ष त्योहारों का, पर्वों का, ये तो उत्सव धर्मता की संस्कृति है।
1: बिल्कुल, और हमारे ब्रज में तो खास तौर पर उत्सवों की संस्कृति ज्यादा है सर, सात बार और नौ त्योहार।
2: जी जी
1: जी,
0: कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम, कोई विशेष आप कुछ कहना चाहें?
2: कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग तो हम आज कर रहे हैं शुक्रवार को, लेकिन ये कार्यक्रम जाएगा रविवार को, है ना?
0: जी जी जी
2: साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो आपने बनाया इसका मतलब क्या है?
0: कौन से वाला?
2: यही जो श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ।
0: अच्छा, ये तो यही है कि हमारे आपके बीच में संवाद हो रहा है, आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमें कुछ करने का मौका मिलता है, आप जो सुझाव देते हैं, आप जो प्रतिक्रिया देते हैं, कभी कभी शिकायत भी करते हैं, तो
2: महोदय वो सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन इसका औचित्य क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ कि आप श्रोताओं की बात को मतलब स्वीकार तो करते और ऐसा होगा आने वाले निकट भविष्य में आपकी बात पर अमल भी किया जाएगा।
0: नहीं नहीं, आप खुल के बताइएगा कि आपकी शिकायत क्या है और कौन सी हम पूरी नहीं कर रहे, बाकी देर सवेर हो सकती है लेकिन शिकायत पे ध्यान तो हम दे रहे हैं।
2: देखिए हम शिकायत नहीं कर रहे सर, आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि श्रोता जो जिज्ञासा रखता है और वो क्या चाहता है कार्यक्रमों में, किस प्रकार का परिवर्तन, क्या तब्दीलियां हैं
0: जी,
2: लेकिन उस बात पर अमल नहीं होता, कतई ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, केवल उसको भरोसा आश्वासन दिया जाता है, उसको भरोसा है।
0: बताइए ना, बताइए आप, ऐसा जो नहीं हो पाया हो, कोशिश तो काफी कर रहे हैं।
2: देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी मेहनत सार्थक सिद्ध हो रही है, आप इतनी मेहनत करते हैं कि बस जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
0: हम मैं नहीं कर रहा, ये टीम कर रही है, व्यवस्था कर रही है, और हम लोग इसी के लिए है भी, चाहे संजय भाई हो, चाहे देवराज हो, चाहे मैं हूँ या रश्मि हो या अन्य जो हमारे साथी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ आने वाले वार्ताकार कलाकार हों, वो भी हमारे अपने श्रोताओं के लिए काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें हम धनार्जन या उसमें नहीं जाए, लेकिन कला, कलाकारों के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, चीजें पहुँचे, यही हम सबका उद्देश्य है, यही रेडियो का भी उद्देश्य है। बाकी आप कुछ इंगित करें तो मैं फिर कुछ जवाब दूं आपको, स्पष्ट कहिए।
2: महोदय ब्रज बहादुरी में जो कार्यक्रम जाता है ना, ब्रज लोक लहरी, उस समय हम आपसे कई बार,
0: वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आप उसकी फरमाइश करने की बात कर रहे हैं ना फोन इन के माध्यम से, तो वो अभी संभव इसलिए नहीं हो पा रहा कि उस समय जो लोग बैठते हैं फोन इन पे वो ट्रेंड लोग होते हैं, और ब्रजमाधुरी को

0: लोग कंपेयर वो उतने ट्रेंड नहीं होते, तो शायद जितना अच्छा ब्रजमाधुरी में लोक लहरी को सुन पाते उतना भी नहीं सुन पाएंगे आप।
1: ब्रज लोक लहरी सर असल बात यह है कि उद्घोषक ही प्रस्तुत करते हैं उसको।
0: जी जी जी।
1: और ब्रज कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञ के तौर पे कंपेयर को तो प्रस्तुत करना होता है।
0: जी जी। तो उसमें आप फोन इन के माध्यम से उसको चाह रहे हैं, यही तो इनकी फरमाइश है ना?
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वो ये सब आपके हाथ में है, उन्हीं मतलब सीनियर लोगों की ड्यूटी निश्चित करें जो मतलब जिस कार्यक्रम को सही तरह से।
0: अगर उनकी सुबह में ड्यूटी लग जाएगी तो फिर आप हेलो भी नहीं सुन पाएंगे। हमारा जो अभी पैनल है किन्हीं कारणों से हम बता नहीं सकते, लेकिन वो बहुत छोटा हो गया है और उसमें जो फोन इन चलाने वाले संचालन करने वाले लोग थोड़ा सा, हम ये नहीं कह सकते कि वो जानकार नहीं है, लेकिन शायद कार्यक्रम नहीं उस तरह हो पाता। अगर कुछ बेहतर होगा तो जरूर लेकर के आएंगे। और आपका ये सुझाव है, ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन उस पर किन्हीं कारणों से अमल नहीं हो पा रहा, इतनी सी बात है, बस यही गैप है। क्यों संजय भाई?
1: जी बिल्कुल सही कहा सिंह साहब आपने। कुछ चीजें प्रोसेस में हैं, लेकिन वो अमल में आ नहीं पा रही है सामने।
0: तो आप धैर्य रखिए, करेंगे, पहुंचाएंगे आप तक आपके।
2: महोदय ऐसा है कि आपके केंद्र से अभी जो विशेषज्ञ महोदय आए थे ना गुरुवार को,
0: जी
2: मोटापन के बारे में आप उन्होंने उनसे भेंट की।
0: जी कुलवंत सिंह सिसोदिया जी।
2: जी जी जी। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, अच्छा गया और हम लोगों ने सुना बहुत ही।
0: चलिए,
2: मैं समझता हूँ कि जो लोग चलने फिरने असमर्थ रहते हैं, ज्यादा मोटापन है, वो उन लोगों ने जरूर सुनकर वो फायदा उठाएंगे।
0: चलिए, उद्देश्य तो यही होता है किसी भी कारण से कि मोटापा कोई किसी स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो नहीं होता, चाहे उम्र कम हो या ज़्यादा हो। तो हम एक बेहतर लाइफ, उनका कहना यही था कि भाई अगर थोड़ा सा, आप तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, व्यायाम वैसे ही हो जाता है, लेकिन जो शहरों में एक बैठे रहने की आदत और लाइफ हो गई है।
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल। व्यापारी वर्ग हो चाहे नौकरी पेशा
0: तो
1: वाले,
0: उनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, दिन में आधा घंटे पौन घंटे, चाहे वो सुबह करें चाहे शाम करें, वो अपने जीवन क्रम में या अपनी पद्धति में ले आए, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप जुड़े महेंद्र सिंह जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
2: जी। नमस्कार जी। सारस्वत जी बैठे हुए हैं ना सर स्टूडियो में आपके साथ?
0: जी जी जी
1: जी।
2: ये सुलझे हुए उद्घोषक है, इनकी जहन में नॉलेज में और सब कुछ है, लेकिन ऐसे महोदय जब ब्रजबांधुरी कार्यक्रम में आए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये श्रोताओं को हर तरह से संतुष्ट कर पाएंगे।
0: जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन संजय भाई ने भी कहा ना कि कुछ चीजें हैं अमल में, लेकिन अभी आप तक आ नहीं।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इन लोगों की ड्यूटी अलग अलग बांट रखी है कि हेलो में आप आएंगे तो ब्रजबांधुरी में कोई और मैडम आएंगे।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
1: नहीं, वो असल में प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुरूप ही ड्यूटी लगाई जाती है। कुछ लोग हेलो करने में सक्षम होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, दोनों ही तरह के लोग हैं।
2: ठीक है, नमस्कार सर।
1: ठीक है, नमस्कार चौधरी साहब। आज तो शिकायत के मूड में थे चौधरी साहब हमारे।
0: जी,
1: एक और कॉल आ रही है सर।
0: हाँ, बात कर लेते हैं।
1: हेलो,
3: कौन के साथ? हम विपिन कुमार बोल रहे हैं छोटी से। और आप कैसे सर?
1: अच्छे हैं। आज हमारे साथ आपसे बात करने के लिए उपस्थित हैं ओपी सिंह साहब।
0: कैसे हैं भैया विपिन जी?
3: हम भी बढ़िया। ओपी सिंह नमस्कार सर।
0: नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रमों के बारे में, कोई प्रतिक्रिया?
3: प्रतिक्रिया तो कार्यक्रम मंगलवार के दिन देखा आया था, वो हमको बहुत ही पसंद आया था, चंद्रिका बेनजीन की आवाज में।
0: बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कार्यक्रम को सुना, नाम याद है आपको और आपको अच्छा भी लगा, और जिसने बनाया उसका भी नाम आपको याद है। निश्चित तौर पे विविधा कार्यक्रम हम इसी तरह का लेके आए कि किसी जीवन के विविध पहलुओं पर, जो भी समसामयिक हों, उस पर रेडियो के माध्यम से एक विस्तृत बात, थोड़ा शोध परक बात, उसमें कुछ तथ्य भी हों, कुछ कथ्य भी हों, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हों, तो इस तरह का कार्यक्रम आपने इसका जिक्र किया, सुना, अच्छा लगा, इसका हमें भी अच्छा लग रहा है।
3: ये कभी-कभी आता है, इसका कोई दिन नहीं है।
0: नहीं, ये महीने का लास्ट जो मंगलवार होता है, जैसे लास्ट संडे को मन की बात आती है ना,
1: जी जी,
0: ऐसे ही लास्ट मंगल जो होता है सबसे अंत वाला महीने का, उसमें ये कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं। चलिए सुनते रहिए।
1: धन्यवाद आपका विपिन जी, इतने ध्यान से आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार सर। एक श्रोता और जुड़ रहे हैं।

0: हमसे
1: स्वागत करते हैं।
0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ नमस्ते सर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रणजीत सिंह बोल रहे हैं।
1: कहिए आपको कैसे लगते हैं कार्यक्रम हमारे, मथुरा से बोल रहे हैं हम।
2: हाँ सर, हमको 2019 से आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: क्या जी, बात
2: जी, जी, जी। पर आया है सर, तब से सुन रहे हैं। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम अच्छा लगता है, किसानों के लिए जो हेलो किसान वाणी आता है प्रत्येक मंगलवार को भी सुनते हैं सर, अच्छा लगता है। उसका सर समय सर बढ़ा देते बहुत बढ़िया रहता सर।
1: हाँ बात तो सही है कि काम की बात अगर और विस्तार से कही जाए तो शायद अच्छा
0: ज्यादा उपयोगी और होती है,
1: लेकिन रेडियो समय सीमा में बना हुआ है तो जो समय अभी दे पा रहे हैं आप उसी में आनंद उठाइए उसका।
2: सर बड़े लोकगीत भी बहुत बढ़िया लगता है सर।
1: जी जी
0: जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत रणजीत जी। आप हेलो में अक्सर फोन करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है।
2: हाँ सर फोन करते हैं, इधर सर फोन नहीं कर पा रहे हैं, फोन करेंगे सर उसमें। हेलो,
1: चलिए अब जो दूसरे लोग फोन कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए, सुनते रहिए रेडियो, सुनते रहिए आनंद लेते रहिए जीवन में। रेडियो को अगर साथी बना लिया तो निश्चित मानिए कि आप बेहतर ही करते रहिए,
0: लाभ ही प्राप्त करेंगे।
2: सर मैं आकाशवाणी से 2003 से सर जुड़े हैं।
1: जी जी जी,
2: हाँ सर
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते सर।
0: नमस्कार। श्रोताओं की बात भी हो गई, शिकायत भी हो गई, अब कार्यक्रम का समय भी हो चला है।
1: जी बिल्कुल, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पता बताने की ही
0: गुंजाइश बची है। सर अपने कार्यक्रम का पता बताए देते हैं श्रोताओं को। हमारा कार्यक्रम है श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, लेकिन हमारे श्रोताओं का स्वागत हम व्हाट्सएप पर भी करते हैं और पत्रों के माध्यम से भी करते हैं।
1: जी जी, ये तो जो श्रोता हमको पत्र लिखे उनके लिए यही है कि द्वारा केंद्र निदेशक लिख दे, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन लिखते, पिन कोड वही है 281003।
0: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 94-122-25-575।
1: जी, और टेलीफोन नंबर तो शायद 2530-135 श्रोताओं को याद होगा, पिन कोड बता ही दिया है। अगर
0: बाहर से फोन कर रहे हैं तो 0-565 कोड अवश्य लगा लें।
1: तो इन माध्यमों से आप हर शुक्रवार को आप 12:30 बजे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अभी इतना ही संजय भाई, ले विदा।
0: जी श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति थी ओपी सिंह और संजय सारस्वत की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है नील कमल।

0: आए जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले.
1: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
0: PM Swanidhi Yojana ki labharthiyon mein karib 46% mahilaye hain. Yani देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं. गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है. बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी. फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी. पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया.
1: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
0: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं. उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई. वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है. बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े. धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे. एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई. ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं.
1: Mr. Modi said today the flight of the country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है. इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट. इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.
1: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatraja.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
0: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं. इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है. नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं. स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं. हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है. वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The death toll from flash floods in central Nepal has risen to 734 today, with more bodies being recovered. Nearly 2,500 people are still missing following the disaster. Bodies have been recovered from all 8 affected districts as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded on the 5th day since the disaster. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following the flash flood tragedy. In a social media post, Mr. Jaiswal said contact was re-established with around 50

0: government through PM Swanidhi, says 35 lakh women benefiting from the scheme. Prime Minister highlights Mission Shakti Sat as a platform for 12,000 girl students from 108 countries to learn satellite technology and pursue innovation. Prime Minister Modi appeals youth, musicians and content creators to develop jingles, slogans and content for Nasha Mukt Bharat campaign, says campaign gaining momentum across the country. Death toll from flash floods in Nepal rises to 734, nearly 2,500 people still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Odisha for today. And defending champions Germany to take on Spain in men's FIH Hockey World Cup 2026 final in Wavre, Belgium this evening. And with that we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
2: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
1: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था? आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति की कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुआ में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे काशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटे काशी नदी के आसपास

0: वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
2: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना एक सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी

0: सीओएफ से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 2:30 हो चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत अपने सैनिक भाइयों के लिए।

A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों को फिल्म भगत सिंह में। गीत को लिखा था समीर ने।

मखदूम मोइनुद्दीन की ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे तलत अज़ीज़ और लता मंगेशकर के स्वरों में। धुन बनाई थी खयाम ने, फिल्म का नाम था बाजार।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म कामचोर में। गीत को लिखा था इंदिवर ने।

मत कभी कभी। आंखें फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रवि ने।

अर्थ फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पवित्र पापी फिल्म से, गाया है किशोर कुमार ने।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अपराह्न के 3 बज चुके हैं और हमारी आज की ये पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5:30 पर अपनी दूसरी सभा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है 30 अगस्त, हिंदी के प्रख्यात साहित्यकर्ता, उपन्यासकार और कवि पद्म भूषण भगवती चरण वर्मा की जयंती। ये 30 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। आपका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर कस्बे में हुआ था। आपकी शिक्षा प्रयागराज से आपने बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। आपके प्रमुख साहित्यिक रचनाएं थीं, उनमें सबसे प्रसिद्ध चर्चित कृति चित्रलेखा 1934 की है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। आपकी अन्य रचनाएं 5 भागों में वाले महाकाव्य उपन्यास भूले बिछड़े चित्र के लिए जाना जाता है। आपको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1971 में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये थी भगवती चरण वर्मा जी के बारे में जानकारी। और अब आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

साथियों, आपने सुना मुकेश और कंचन को फिल्म धर्मात्मा में। दोस्तों, जबरन गुमशुदा लोगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज यानी हर वर्ष 30 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बिना मर्जी के या जबरन गायब किए गए लोगों की गंभीर समस्या के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2010 को प्रस्ताव पारित कर इस दिवस की मनाने की घोषणा की थी। पहला आधिकारिक दिवस 30 अगस्त 2011 को मनाया गया। इस वर्ष वैश्विक नारा पीड़ित सर्वप्रथम कार्रवाई अब रखा गया है, जो पीड़ितों के लिए न्याय, सच्चाई और मुआवजे के अधिकार पर जोर देता है। आप सभी जानते हैं कि जबरन गुमशुदगी क्या है। जब किसी व्यक्ति को राज्य के एजेंटों, सरकारी अधिकारियों या सरकार समर्थित समूह द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध गिरफ्तार कर नज़रबंद या अगवा कर लिया जाता है, फिर उनके ठिकाने या स्थिति को गुप्त रखा जाता है,

से जबरन गुमशदी कहा जाता है। यह मानवाधिकारों का एक क्रूर और गंभीर उल्लंघन है। ये थी ये जानकारी, और आइए आप सुनते हैं ये केस।

दोस्तों आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और सलमा आगा को फिल्म निकाह में, और आइए अब सुनते हैं फिल्म शराबी का ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की।

साथ ही आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों को। फिल्म का नाम था शराबी। इसी के साथ युव वाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी साथियों को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म

0: पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा 6:15, जिसमें राकेश कुमार शास्त्री ब्रज काव्य मकरंद प्रस्तुत करेंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम होगा 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:50 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी ममता रानी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, अधिक बारिश में फसलों का जल भराव से कैसे बचाएं फसलों को।

इसके अलावा आप सुनेंगे कृषि में एआई का डिजिटल तकनीकी उपयोग। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपनी पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। प्रादेशिक समाचार 7:20 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से ले करेंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, देशगान 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे दोस्ताना फिल्म के कुछ गीत। सुहाने तरानों को आप आनंद लेंगे 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुगूंज, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से ले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। 7:30 पर आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम थाईलैंड के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

बॉम्बे स्वरम में आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं राकेश कुमार शास्त्री।

अभी आप सुन रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं राकेश कुमार शास्त्री। आपने सुनी ब्रज की और ठाकुर जी की महिमा की पदावली, और संग में जो भाव बहोर करके राकेश कुमार शास्त्री जी ने आपको सुनाया, वो अपने आप में बड़ी आनंद की अनुभूति प्रदान कर रहे हो। श्याम सुंदर प्रेम के भूखे हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के रस, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गई ठकुराई। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। श्याम सुंदर ने अपने भक्तन के प्रेम के लिए झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध करत बढ़ाई। विदुर जी के यहाँ साग खायो, सबरी जी के यहाँ बेर खाए, और बेर हुए ऐसे जिनको चाक चाक के श्याम सुंदर भगवान राम को भोग लगा रही सबरी। भगवान के दर्शन की लालसा से श्री राम जी सबरी के प्रेम से अत्यंत भाव विहोल हो गए, और बिन्ने वो सब भूल गए कि वो ठाकुर हैं, वो तीन लोक के ब्रह्मांड पति हैं, जिनकी एक दृष्टि से प्रलय है सके है। वो चाहे श्याम सुंदर हों, छाछ पे बिन्ने नाच गोपी नचाती हैं, प्रेम के बस वशीभूत है कि तो भैया ये हो आज को ब्रज काव्य मकरंद। आकाशवाणी को ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आपको सुनवा है कार्यक्रम संध्या वंदन।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण।

भैया संध्या 6:50 पे आप कार्यक्रम सुन रहे हैं ब्रज ग्रामीण। तो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैया देखो, बात ऐसी है कि हमारा जीवन और हमारी धरती

ये कि हमारा जीवन और हमारी धरती है कि ना, जो हमारी धरती है, प्रकृति है, यानी कि जहाँ से जो हमारी खेती बाड़ी हथका है, हम बातें जुड़े हुए हैं और वो हम ते जुड़ी हुई है कि ना, बाकी बिना तो कुछ जीवन ही ना है भैया, देखो है कि ना। और जो हमारे किसान भैया है, अन्नदाता है, रात दिन सवेरे ते धोताए ते ही लग जाते हैं, रात ताऊ खेतन की देखभाली करते हैं, फिर भैया अगर नेक ध्यान ना दे में तो बड़ी खराब हो जाए फसल, ठाड़ी फसल खराब हो जाते हैं। देखो जो खेत हमारे निचले आते हैं कि ना, इन दिनों जब बरसात को पानी उनमें भर जावे, हमने या तो मेड़बंदी ना करी ढंग से है कि ना, या बाकी जो निकासी है नारी है का है, नाली बनाए दे में तो ना हम पानी निकले का है, का है मेड़ हो तो का है, तो बाकी हमने पेड़ पौधा ना है काटे, वहां में उग रहे हैं, तो बस एक है कि पानी भर जावे है ना, पानी रुको रही है। कछु फसल ऐसी होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता भैया कम होते हैं, और जल भराव की स्थिति जो निचले खेत हैं उनमें है सकते हैं है कि ना। तो भैया आप अपनी जो मेड़बंदी है वह ऊंचो रखो, और जो नाली है पानी की निकासी को रास्ता है वाकूर साफ रखो, पेड़ पौधा घास फूस और कूड़ा कचड़ा जो रुक जा चुका है वह हटा तरी करो, जाते कि हमारी फसल में जो खेत में जल भराव की स्थिति है वो ना बन सके और पानी निकस तो रहेगा। तो भैया जाने आप अपने एक काम और करो करो कि अपने खेत पे शाम सवेरे काउ टाइम सांझ को एक बार टहला जरूर मारते रहेगा, क्योंकि इन दिनों खेतन में एक रोग की बीमारी की समस्या है जाते हैं, तो वो हमें संग ही संग पता लग जाते हैं, तो काउ तो हम संग ही संग उपचार कर लेते हैं भैया। तो पानी की जो आवश्यकता है उतनों ही आप अपने खेत में रखो, और आपको लगे कि पानी ज्यादा भर गया हो है, निकासी की व्यवस्था ना है, तो वाकू काऊ काई तालाब में पोखर में वाकू ऐसी व्यवस्था कर दो तो वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर वहां में सिंचाई के काम आवेगा बाद में, जैसे हमारी फसल की सिंचाई हो जाएगी और हमारा बिजली को और जो पैसा को खर्चा है वो बच जाएगा। तो पानी जल तो बहुत उपयोगी है और जल ही जीवन है, जाले हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना है, और वाको प्रबंधन और की बाकी व्यवस्था वर्षा के जल की हमें समुचित करके रखनी है भैया, पहले से रखनी है, अगर ना करी तो अब कर सकते हैं आप, ध्यान दो जा बात पे। तो भैया ध्यान तो सब जो बात को है कि आज रविवार को दिन आए पतो है, और आज आप कार्यक्रम सुनने में मन भावन ठीक है ना, तो चलो मन भावन कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आनंद लेते हैं, जो गांव में हमारे जो अतकाएं भैंस हैं गैया हैं, देखो बिना दही मठा के तो जीवन अच्छा ना लगे है कि ना, कैसी लगे मीठी छाछ, बढ़िया लगे कि ना, अरे मीठी छाछ ही पीएंगे भैया, खूब पी रहे हैं, ताजी ताजी भैंस माया दूध देते जमा देते मटकिया में चला लेते हैं छाछ पी लेते हैं, गांवन को यही आनंद है भैया। तो मदन मोहन ब्रजवासी को गायब हो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, सुन लो और प्यारी मीठी तेरी छाछ पिवाए जा, सुन लो या लोकगीत को।

भैया मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में जे मीठो सो लोकगीत सुन लियो कि नहीं। अरे मीठो ही मीठो बोलो, मीठो मीठो खाओ, मीठो मीठो ही रसपान करो। मत कहवे को मतलब जी ना है कि ऐसो मीठो मिठाई खा लियो त्योहार गुजर के गयो है, निकलो है कि ना है भाई। अरे भैया देख बाहर के और बड़े सोच समझ के घर की बनी हुई चीजन में ज्यादा आनंद आवे पतो है। अरे कोई कोई चीज तो ऐसी बढ़िया हो वह घर की कि बहुत फायदा करे वो। अरे तो और अरे हम तो ऐसी बात कर रहे हैं कि देखो हमारे खेती क्यारी को काम करें हमारे किसान भैया हैं तो स्वस्थ रहे वो बहुत जरूरी है। और बाकी काज है अब इन दिनन में पेड़ पौधा खूब लगा दो, क्योंकि जहाँ पे जगह खाली पड़ी है वह जगह पेड़ पौधा रखो लगाए दो। और हमारे काना तो पता है हमारे कदम के वृक्ष उनकी खुशबू आवे ही जा समय पे जब पापे एक कदम को पीड़त ना है हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भैया हम तो खूब लगाते हैं, उत्सव हो त्योहार हो पेड़ पौधा जरूर लगाए दो। और सुन ले मत एक और लोकगीत माधुरी शर्मा।

देखो भैया, ज्ञान की बात तो उद्धव जी के ही पास है, बहुत ज्ञानी है उद्धव जी तो है, पर सबकी बात है बड़े ध्यान से और सुने, अपने ज्ञान को पा इतना ज्ञान है तो फिर वो ज्ञान की बात ने और सुने और है ना, बहुत ज्ञानी है थे। तो ऐसे ही देखो अपनी जी जो है का है ब्रज नगरी है कि ना है, जहाँ में इतनो आनंद है, सुख है, यहाँ पे इतने दर्शनार्थी आवते हैं। तो अब तुम्हें पता है आई बारो जो समय है का है, अरे जन्माष्टमी आवेगी क्या ना है, बाको ध्यान रखना है साफ सफाई को, और बिहारी जी के दर्शन जरूर करवे जाइयो, पर ची ध्यान रखियो भैया, धक्का मुक्की से जरूर बचियो, दर्शन तो मन ते हुए जाए ना बैठे बैठे, मेरी बात समझ रहे हैं कि ना है? तो हम और आप तो बैठे ही बैठे बिहारी जी को स्मरण कर लें, ध्यान कर लें, और उनको हम सुन लें जे लोग गीत, बिहारी तेरी यारी में सुख नाए पायो।

बिजेन तिवारी को गायो भयो। सुनो भैया, आपने ये लोकगीत मन भावन कार्यक्रम में देखो ठाकुर जी को स्मरण करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस यही है हमारा मन भावन कार्यक्रम, है ना। आनंद आना चाहिए और प्रभु को स्मरण मन से करते रहो। तो सुने हैं या लोकगीत को।

0: ओम प्रकाश गोप को गायो भयो भैया, आपने सुनो ये लोकगीत, और आप ऐसे ही मन से हमारे कार्यक्रम को सुनते रहो। तो यहीं पे मन भावन कार्यक्रम अब विश्राम ले है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।
1: प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की तय की है नई यात्रा। रक्षा मंत्री ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं, कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो?

0: क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से शुरू हुए मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की सराहना करते हुए कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
0: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: क्लीनअप पटवाई अभियान की मुहिम चलाने वाले आकाश यादव और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और अपनी मुहिम की जानकारी देते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है।
2: जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर जाकर साफ सफाई का कार्य हम अपनी टीम के साथ करते हैं। उद्देश्य जो है वो लोगों की मानसिकता बदलना, लोगों को जागरूक करना कि प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है या हम अपना कहीं बाहर जाते हैं ट्रेवल करते हैं तो जो भी चीज हमारे प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको हम डस्टबिन में ही डालें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश ने 9 वर्ष में सुरक्षा सुशासन की नई यात्रा तय की है। आज राजधानी लखनऊ ने पुरानी विरासत के साथ आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान बनाई है।
3: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के

0: घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और उसे प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने आज लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महान विभूतियों की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये नए युग की महिलाएं हैं, सरकार उन्हें अवसर और सुरक्षा प्रदान कर रही है। लखनऊ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम सेतु उद्योग सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास, हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था और आज देश अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय देख रहा है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज लखनऊ में कहा कि प्रदेश में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसका लाभ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में जाति, धर्म और मतभेद को भुलाकर एकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मथुरा में 38वीं क्षेत्रीय हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज हॉकी के अंडर 14 बालक वर्ग में नोएडा और पूरनपुर पीलीभीत की टीमों के बीच हुए मुकाबले में नोएडा ने 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं फुटबॉल में अंडर 14 बालक वर्ग में मथुरा और नोएडा की टीमों के बीच हुए मैच में मथुरा ने 4-0 से जीत दर्ज की। 4 दिवसीय ये प्रतियोगिता 1 सितम्बर तक चलेगी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वर्णा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट को छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का बताया मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की
2: Having crashed out of the group stage of the T20 World Cup, nothing less than the title would be the target as India start their campaign in the Asia Cup again.
1: जो सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। और प्रदेश में गंगा यमुना सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्टूडियो में आ चुकी हैं दो ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर विमेन इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ हैं एंड एक वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार हमारे

आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को फिल्म जहर में। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे नागलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, कृष्णनगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना, वशुरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, श्रीमती मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी और इनके परिवारीजन, सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से लाडलाजी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी वाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला और चीन आसमा और इनके परिवारीजन, ग्राम बाधा मुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन

और यहीं से गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी और इनके परिवारीजन चंद, कुलकर्णी, हेमलता, सील से गांव और ढाकघर निम्नावाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके सभी मिलने वाले दोस्त, मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गांव केरो जिला तारण, तरन तारण पंजाब से गोदर्शन, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके सभी मिलने जुलने वाले दोस्तों,

ये संदेश हमें मिला है भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी, प्रतिमा, द्रौपदी और धनेश्वरी का, दंतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश, नामदेव परिवार, मेन मार्केट, गांव व पोस्ट, सोरई, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। और ये संदेश हमें मिले हैं अगले गीत के लिए, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल, देवांशी विश्वकर्मा, ग्राम मवना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन, रायन जी, पद्मा टाकेज, नेपाल नगर, मध्य प्रदेश से। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला से, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द राहुल। काशी निवास, बंगाली पंजा, नागपुर से, प्रकाश, भारती, जानवी, वैष्णवी और इनके सभी मिलने जुलने वाले साथीगण। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को, फिल्म का नाम था परदेशी। इसी गीत को सुनना चाहा था, पटियाली रोड गंज डोडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरिबा और हबीबा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल दिशानी और निमित आहूजा, मारहारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनबाज, नवेद हसन, सुहेल, अनम, रशीद, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया अंजुमन खान, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, नारायण और सोपान, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नलोफर फातिमा,

मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक और लवना, आप भी सब सुनना चाहते थे इसी गीत को। और अब इसी के साथ आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम

0: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत वीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किए जा रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय है 25 years of SCO together towards sustainable peace, development and prosperity. SCO मध्य एशिया और यूरेशिया का एक प्रमुख बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था और तब से संगठन के एजेंडे में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। बिश्केक सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, आर्थिक और व्यापारिक संबंध तथा सतत विकास जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में बिश्केक शिखर सम्मेलन भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। SCO सम्मेलन और भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधान

0: प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम क्या क्या होगा?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी 31 अगस्त को वर्ल्ड नॉमेड गेम्स के उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे और 1 सितंबर को एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन द साइडलाइंस माननीय प्रधानमंत्री जी की बायलेटरल मीटिंग्स भी होंगी, जैसे कि आपको ऑलरेडी ज्ञात है प्रधानमंत्री रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे और ऑफकोर्स वो जो होस्ट कंट्री के लीडर हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सदिर जापरोव प्रेसिडेंट ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक से भी उनकी बायलेटरल मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि सभी जो बायलेटरल रिलेशनशिप का रिव्यू होगा और इसको कैसे और सुदृढ़ किया जा सके उस पर चर्चा होगी।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान एससीओ समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है और इस साल की थीम है 25 ईयर्स ऑफ द एससीओ टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है ये primarily is to participate in the 26th meeting of Council of Head of States of the SCO. And India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, enjoys a clout in the global arena. And India is also a very strong and respected voice of the global south. And India is one of the largest global economies growing at very fast rate, enjoys a considerable interest or I'd rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries, which are based on historical and civilizational foundation.
0: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
1: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलेटरली बट ऑल्सो इन द मल्टीलेटरल फोरम। एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस and to continue in their journey of economic development to bring prosperity to their respective citizens.
0: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश, भारत भी और किर्गिस्तान भी, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
1: हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलेटरल एक्सरसाइज खंजर व्हिच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड वी ऑल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense ITEC programs and by curating tailor-made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action and all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
0: सर, किर्गिस्तान जो है वो भारत का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यदि हम सेंट्रल एशिया के साथ में भारत के संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
1: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में आता है, दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
0: सर, भारत और किर्गिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है संबंधों का। इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
1: 2019 के बाद जो हमारा बायलेटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके। उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक, सिमिलरली फ्रॉम हियर दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एग्जीबिशंस एंड वी आर ट्राइंग टू

0: explore how the bilateral trade turnover could be increased and how the mutual investments can be promoted between the two countries.
1: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में, तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं.
0: The Indian diaspora always is an asset because they are the organic bridges between the two countries and they help in creating an image of the country and we are very proud that the Indian diaspora in the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation and they act as a facilitator or medium to enhance the people-to-people linkages.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किर्गिस्तान की ये तीसरी यात्रा है. इसके पहले भी वो 2019 में एसियो समिट में भी शामिल होने की आ चुके हैं. ये यात्रा का कितना महत्व है?
0: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो. प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलैटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है. सो मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है.
1: सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
0: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap and they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta, and the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage, and there is a participation from India also and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game. And I think Honorable Prime Minister has accepted the invitation of His Excellency the President of Kyrgyz Republic and he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many, many centuries.
1: Thank you so much, sir. Akashvani Samachar se baat karne ke liye.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
3: आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी का. ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत.

आप सुन रहे थे शान को, फिल्म का नाम था आंखें। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं देशगान।

संबित सुरम में आप सुन रहे थे देशगान। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ताना फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं दोस्ताना फिल्म के कुछ गीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने दोस्ताना फिल्म के कुछ गीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आ गया मेरा लाइजॉल, ये फिनाइल के मुकाबले लगे बस एक तिहाई, छह घंटे तक घर महकाए और दे 10 गुना ज्यादा सफाई, ताकि घर हमेशा लगे ऐसे कोई आ रहा हो जैसे।
1: क्लास में सबसे ज्यादा अटेंडेंस है मेरी, रोहन की नहीं है, इतना फर्क क्यों?
0: फर्क बस इतना सा है, इतना सा डेटॉल यहाँ यहाँ यहाँ और इतना सा
1: यहाँ,
0: तभी तुम न बीमार पड़ते हो ना स्कूल मिस करते हो।
1: इतने से इतना फर्क पड़ता है,
0: जहाँ डेटॉल इस्तेमाल होता है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। रेकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन।
2: हमें इम्प्रेस करने के लिए बाथरूम अभी साफ किया ना,
3: सुबह 9 बजे किया था
2: और अभी तक खुशबू, नॉट पॉसिबल।
4: पॉसिबल नया गाढ़ा लाइजॉल फ्रेश एंड क्लीन बाथरूम क्लीनर, 10 गुना सफाई और 12 घंटे तक खुशबू, नया लाइजॉल फ्रेश एंड क्लीन बाथरूम क्लीनर।
5: क्या खाना था?
6: बढ़िया राजमा।
7: सब बैठे और मम्मा अकेले काम कर रही है।
8: अरे ये क्या?
7: सोचा आपकी मदद कर दूं।
8: ओहो इतने जिद्दी दाग, इन जिद्दी दागों के लिए अपना सर्फ एक्सेल है ना?
9: नया सर्फ एक्सेल इजी वॉश, निकाले जिद्दी दाग 100% तक। सर्फ एक्सेल।
10: सरसों के तेल की खुशबू से घर का खाना ही नहीं, हमारी परंपराएं भी महकती हैं। इसीलिए फॉर्च्यून कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, क्वालिटी के 100 से भी ज्यादा टेस्ट से गुजर कर स्वाद और शुद्धता को बनाए रखता है।
11: 15 मिनट में स्पीच देनी है सर।
12: गाड़ी नंबर
11: ZX।
12: 40 सालों से डॉक्टरों का भरोसेमंद फॉर्मूला
13: ZX का, सेफ और असरदार फॉर्मूला, खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में।
14: इंस्पेक्टर अजय शास्त्री, मेरे बदन के अंदर जितना खून है उसकी एक एक बूंद से मैं हिंदुस्तान लिख दूं। जब भजन कीर्तन से काम नहीं चले तो बलि चढ़ानी पड़ती है।
15: मौ कसम 1 सितंबर मंगलवार शाम 7 बजे।

तेरी माँ गायत्री, तेरी सुंदर नगर की गायत्री, तेरी सुंदर नगर की गायत्री, तेरी माँ गाय गायत्री, तेरी माँ गाय सुंदर नगर की गाय, तेरी माँ गाय सुंदर नगर की गाय, तेरी माँ गाय नगर की गाय, तेरी माँ सुंदर नगर की गाय, तेरी माँ सुंदर नगर की गाय।

0: देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार

0: करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में

0: ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
2: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास में। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000

0: 50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच

यशुदास को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दादा। लता मंगेशकर को आइए सुनते हैं फिल्म राजा और रंक में।

0: अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:30 हो रहे हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है।

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं। कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए, और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है, और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम, आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं

0: और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कर देने का नाम नहीं, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीब की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
2: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेजी रह गुजर।
0: फिराक की खासियत ये थी कि उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और संस्कृति की सहज झलक मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश की। उनकी भाषा और सोच में भारत की उस साझा संस्कृति की झलक मिलती है जहां अलग अलग भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
3: उन्हीं के दिल हैं अमीने रमूज़ आज़ादी, जो जानते हैं असीरी है एक फन से
4: यार।
0: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है, यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।
5: मैंने ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया, कायनात की हर सरहद नजरों से छुपती जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो, इस अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बदलो, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को।

शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही।

0: कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था, मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
1: जो फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देख रहा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन इन बातों में भी जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखलाने के लिए खींच लेते थे और वो फोटोज स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा, बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय हेड मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
2: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुंचूं जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
0: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज। उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
2: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी जो कृष्ण के देह त्यागने के 7वें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी

0: द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फ़र्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फ़र्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फ़र्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फ़र्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फ़र्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही हजार हाथों से बांट देना है।
1: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो या एक स्त्री के मन और अपनी पहचान की बात, अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
0: अर्ध नारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
1: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रहीं। यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
0: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूं मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ यूर सेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया और जो सोचती रही, लिखती रही, वो एक यात्रा है अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ कि ये एक अक्षर की यात्रा है, छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा।

जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा, और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और जब वे आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं, तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज़ दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया, और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक। अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं। और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन से सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनुगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक

0: निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह, शोध आलेख एवं निर्देशन मोनिका गुलाटी।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में लीजिए प्रस्तुत है जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री V.S. के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD, नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकटमोचन मंदिर स्पिकमेके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्मभूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद is an A-grade violin Carnatic artist of Akashvani and Doordarshan. He has done his master's in Carnatic music from Delhi University. He has learnt basics of violin recital by Kalaima Mani Shri V.S.K. Chakrapani. He is recipient of scholarship to young artist awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic instrumental violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and resources training in the field of Carnatic music instrument violin in 2010. Awarded Gandharva Vignaya jointly

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगु। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुथुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगु। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalanayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलाहरी। कॉम्पोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आपको पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय

0: बाद लगा ऐसे जो बल्लेबाज आए हैं कंडीशन का क्या सही उन्होंने आकलन किया था क्योंकि दे वर गोइंग फॉर देयर शॉट्स?
1: बिल्कुल, और देखिए हम भी ये बात कर रहे थे कि मैच देख रहे थे जब कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल वहाँ पर, और जो हमारे बल्लेबाज हैं या तो वो बॉल को जज नहीं कर पा रहे थे और बॉल थोड़ा डिप करके जा रहा था, तो डिप जब बॉल करता है ना तो थोड़ा कदमों की चहलकर्मी दिखानी पड़ती है, तो वहाँ मुझे लगता है कि जजमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था बल्लेबाजों का, जिसकी वजह से डॉट बॉल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल को सही तरीके से आप जज करते हैं, डिसीजन सही तरीके से लेते हैं किसी भी शॉट को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आपको आगे आने वाले इनिंग्स में भी हेल्प करेगा। तो स्पिनर्स जब बॉल डाल रहे हैं, बॉल होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको अटैक करेंगे स्पिनर पे तो ज़्यादा आसानी होती है खेलने में, रादर देन आप विकेट में रहकर क्रीज में रहकर गेंदबाजों को खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रिप कर रही है सतह जो ग्रिप करती है गेंद को, तो वो कहीं ना कहीं हलचल करती है और वो हलचल बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करती है।
2: देखिए हलचल काफ़ी अच्छी है, लेकिन आने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और क्लिक करना पड़ेगा, एंड आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में भी होंगे, उनके जवाब शायद राकेश जी बेटर तरीके से दे सकें कि आज शेफाली वर्मा चली बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी हमारे श्रोता थे या जितने भी मैच लोग देख रहे होंगे कि हाँ किसी और का क्लिक होना भी बहुत ज़रूरी था?
3: देखिए मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा से कि आप वक्त की नज़ाकत के हिसाब से खेलें, आप वक्त की टीम को ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रिकेट में कहते हैं कि दो विकेट जल्दी जल्दी मत जाने दो, हमारे साथ दो बार ऐसा वाक्य हुआ कि एक एक ओवर में हमारे दो दो विकेट गिरे और वो ख़राब शॉट सिलेक्शन था। हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान है उन्होंने भी बोला कि ख़राब शॉट्स हमने खेले जिसकी वजह से विकेट गंवाए। तो आपको इंटरटेनिंग खेलनी है प्लस टीम की ज़रूरत के हिसाब से। तो जो ये नए खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के अंदर, देखिए टैलेंटर एक बहुत पुरानी चीज़ है, आज वो चीज़ मुझे तो ख़त्म होती दिखती है। हम किसी को टैलेंटर नहीं मानते, टैलेंटर कहना पहले एक थोड़ा सा खिलाड़ी का एक अपमान सा माना जाता था, लेकिन आज हर खिलाड़ी को योगदान देना है। जो निचले क्रम का गेंदबाज भी है तो उसको भी तैयारी कराई जाती है कि आपको 10-15 रन का योगदान कैसे आप दे सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से खेलना है। दूसरा बल्लेबाज अच्छा कर रहा तो आप उसको चांस दीजिए, सिंगल लेके उसको मौका दीजिए। ये सारी चीज़ें जो पारी को संवारने में काम आती हैं वो हर खिलाड़ी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर टीम के लिए खेलना है प्लस अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को भी दिखाना है। अगर आप अच्छी एबिलिटी के साथ प्रदर्शन करेंगे तो उसका टीम को भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप अच्छी एबिलिटी पिच पे जाके नहीं दिखाएंगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा, टीम को भी नुकसान होगा।
0: और लतिका जितनी बल्लेबाजी डीप हो, मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं उनके पास भी कॉन्फिडेंस होता है अपनी रणनीति बनाने का कि कुछ अगर जरूरत पड़े तो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ सकता है?
1: देखिए बिल्कुल, आपके पास प्लेटफॉर्म एकदम सज गया था, ऊपर जो आपके ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी वहाँ पर बल्लेबाजी की, आपको ये दिखाया कि इस विकेट पर किस तरह की शॉट सिलेक्शन जो है आप करके इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसे बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा है कुछ कर रहा है तो आप स्ट्राइक रोटेट इनिंग के बीच में कर सकते हैं, तो डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं देखेंगे उस टाइम पे, क्योंकि जितने भी हमारे अगर फुलमल्ली की बात कर ले हम, दीप्ति शर्मा हो गई, ऋचा घोष हो गई, ये सब एक बड़े हिट को लगाने के वजह से जो है अपना विकेट गंवाया इन्होंने। तो मुझे लगता है जब आपके पास ऋचा घोष 13वां ओवर में आ गई थी अंदर, उनके पास 7 ओवर थे वहाँ से, अराउंड 40-40 बॉल्स उनके पास थी खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ इनिंग बिल्ड करना आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ बात करके, क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी कहीं ना कहीं आपको एक या दो गेंदें ऐसी मिल रही थी जो आप बड़े शॉट में उन गेंदों को कन्वर्ट कर सकते थे। तो एक टेम्परामेंट आपका कैसा है उस टाइम पर बल्लेबाजी करते हुए और किस तरीके से, जैसा कि हरमन ने भी कहा कि आपके शॉट सिलेक्शन क्या है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक गेम को एक अच्छे नोट पर फिनिश करने के लिए जहाँ 20-25 रन थोड़ा पीछे रह गए।
2: और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मौके ज़रूर मिले थे थाईलैंड को कैचेस के, लेकिन वहाँ पर वो कैचेस ड्रॉप हुए थे और वो सीधे सीधे कैचेस थे। राकेश जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
3: वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उस तरीके का होता कि क्या होता है कि आउटफील्ड में जब आप खड़े हैं या इनर सर्कल में खड़े हैं थोड़ा स्टार्ट आपको लेना पड़ता है, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ उन तक वैसी उनको कोचिंग उस तरह की नहीं दे पाया या उनको बताया गया तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक प्रैक्टिस में चीज़ें करना अलग बात होती है और मैच के अंदर जब बड़ी खिलाड़ी जिनका नाम हो जिनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है

0: तो उनके खिलाफ जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज़ का दबाव रहता है। तो वैसे ही मतलब फुर्ती इतनी उनमें नज़र नहीं है, लेकिन आप देखिए जब सेकंड हाफ में वो कैच पकड़ने लगे तो उन्होंने कैच पकड़े, बाद में उन्होंने दिखाया, हालांकि वो थोड़े आसान कैच थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डिफिकल्ट कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं।
1: लतिका, अब हम शो के समापन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वापस से भारतीय गेंदबाजी पर जिक्र करते हुए चलते हैं, खास करके पेस अटैक जिसपे बहुत सवाल उठ रहे थे। आज जो जवाब मिले हैं शायद कंक्लूसिव जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंदिनी ने शुरुआती स्पेल में मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद समझदारी से स्लो ओवर्स का इस्तेमाल किया,
2: देखिए बिल्कुल, और काफ़ी काम करना पड़ेगा अभी भी। अगर आप इससे बेहतर किसी टीम के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, क्रांति गौड़ जिस तरह की गेंदबाजी करती है, नंदिनी जिस तरह की गेंदबाजी करती है, मुझे लगता है कि नंदिनी के पास जो है स्विंग करने की जो कला है उसकी वजह से वो विकेट लेने में कामयाब होती रही हैं। सही लाइन और लेंथ पर अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, वहाँ मेहनत करते रहेंगे तो आपको और सफलताएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज विकेट उनके खाते में आए और बहुत टाइम के बाद ये विकेट देखा है हमने एक पेस बॉलर्स के, चाहे वो क्रांति गौड़ हो चाहे वो नंदिनी हो। तो अच्छा लगता है कि जब आपके अपफ्रंट आकर जो गेंदबाज हैं जो इनिंग की शुरुआत करते हैं वो गेंद विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में और अच्छे इनके जो स्टैट्स हैं वो हम देखने को मिलेंगे।
3: बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। शंखनाद, कमाल का हो गया है, शुरुआत काफी भली हो गई है, लेकिन आने वाले सफर में और भी सारे हर्डल आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी समय हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, और अगली चुनौती भारत को मिलनी है 3 तारीख को हांगकांग के रूप में, हमारे विशेषज्ञों का, आपका गौतम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन टीम का भी, माधवी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर हमारे प्रोड्यूसर हैं, शाहनवाज खान, टेक्निकल टीम है हमारी अजय राणा, जयराम, सुशील कुमार और सचिन वत्स की। और इसके साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और वापस आने के वादे के साथ यहां से साइन ऑफ करते हैं।
4: प्लेयर ऑफ द मैच।
5: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:22 हो चुके हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर अपनी पहली सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।